0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई और आज विसर्जन विधि की बारी है। गणेश विसर्जन हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति जल में घुल जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार के हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है। वाशिरी में गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने कल भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आपसी भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर दिया। वहीं फेडरेशन के अध्यक्ष ने मुक्का में महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग निर्माण के लिए लीज पर भूमि देने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। बॉम्बे अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिन की हिरासत का हवाला देते हुए आजसू से अपना बयान दर्ज करने की मांग की। सुनवाई में वकील हुबेन मोहंगा पिले ने सौजन जिनारन से एक रिनियन दस्तावेज और गुलशन गोविंद की लोमोन में उपस्थिति को लेकर पूछताछ की, जिसे वकील ने चचेरे भाई होने के नाते अप्रमाणित बताया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है, जबकि कंपनी बंद होने की अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय है। और विदेश में हुती लड़ाकों के सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले से तेल आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने के कारण अरब देशों की ईरान के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। मस्कोरिंस के दक्षिण पश्चिम पर पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और सेंट्रल प्लेटो तथा हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि

तटवर्ती इलाकों पर अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी। अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर

0: करते समय और रास्ते पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इन लहरों के कारण विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय निचले तटीय इलाकों में तटीय बाढ़ आ सकती है। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। सूर्योदय 6:06 पर और आज शाम 6:04 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: 819 kHz
2: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04 हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये वाकवा के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है, खासकर रू रिमियोलिए, मौसलमा फ्लोरियो और गोपी लेन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर को सुबह 8:30 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05
1: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेव 819 kHz पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। 15 सितंबर आज की तारीख 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:05 और 30 सेकंड्स। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जाजनक हो, मंगलमय हो और गणेश चतुर्थी की पावन मंगल कामनाओं के साथ आज विसर्जन का दिन सभी के लिए भावनात्मक रहे, बस यही शुभकामनाओं के साथ अभी थोड़ी ही देर में हम संतवाणी कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे जो कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य महंत श्री डॉक्टर श्यामदास जी और इसी के साथ ठीक 6:20 के करीब आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम जो होगा गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मराठी भाषा में और इसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी नितिन बापू द्वारा। 6:30 पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आइए अधिक देर ना करते हुए कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम संतवाणी के साथ जुड़ते हैं।
3: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।

वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बोंतेर वाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है सद्गुरु के समान कोई नहीं। गुरु शब्द के बहुत अर्थ पढ़े सुने जाते हैं, जैसे भारी, विस्तृत, बड़ा, श्रेष्ठ, श्रद्धेय, अध्यापक, शिक्षक और विशेषतया धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जो ज्ञानोपदेश करे आदि। यह स्पष्ट है कि गुरु शब्द बड़प्पन, महानता, श्रद्धा एवं सम्मान का पर्याय है। अर्थ एवं मान्यताओं की दृष्टि से जो अपने आप से बड़े माननीय हो, जो साध्य जीवन के परिपालन एवं उसे समृद्ध बनाने में सहायक हुए हो, और जिनसे कुछ गुण, शिक्षा, ज्ञान तथा अनुभव की प्राप्ति हुई हो, वे गुरु की श्रेणी में आते हैं, गुरु रूप माने समझे जाते हैं। इस आधार पर

मनुष्य के जीवन में कई गुरु समझ पड़ते हैं जिनका संत विद्वानों ने अपने शब्दों में स्पष्ट वर्णन किया है। सबसे पहले जन्म देने तथा पालन पोषण करने वाले माता पिता ही गुरु हैं। फिर वह दाई माँ जो शिशु के जन्म के समय में उसकी नाल छीलती है तथा अन्य सेवा शुश्रूषा करती है, गुरु रूप है। इसके पश्चात जो बच्चे का नामकरण करता है वह नाम सबको मान्य होकर आगे तक चलता है, गुरु समान है। आगे वह गुरु है जो विद्या पढ़ाता है, कर्म कला सिखाता है और राजनीति संसार नीति मर्यादा आदि का ज्ञान देता है। फिर वह गुरु है जो राम कृष्ण हरि आदि के नाम की ज्ञान दीक्षा देकर धार्मिक भावना से जोड़ता है। और फिर वह गुरु है जो नाना प्रपंचों पाखंडों जड़ मूर्ति तीर्थों तथा कल्पित देवी देवों के आदि से छुड़ाकर एक ईश्वर ब्रह्म से लगाता है। ये सभी गुरु माननीय आदरणीय हैं। इन सबका सबके जीवन से संबंध है। इनके संपर्क में आने से इनकी योग्यता अनुसार सीख शिक्षा एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सब इनके शिष्य रूप हैं। अतः सबको इनका आभार उपकार मानकर इनकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। परंतु इसी के साथ यह भी समझना चाहिए कि इन सब गुरुओं से मिली सीख या ज्ञान शिक्षा सदा साथ चलने वाली नहीं है। इनसे प्राप्त ज्ञान शिक्षा इस असार संसार में नश्वर शरीर एवं मन के मान्यताओं तक ही सीमित है और उससे सर्व दुखों भ्रमों की निवृत्ति तथा कल्याणोद्देश्य की बात नहीं बनती। सब प्रकार से सेवा पूजा एवं वंदना करने योग्य उक्त सब गुरुओं से ऊपर सर्व प्रमुख सर्वोच्च गुरु वह है जो सब कमियों एवं दोषों को बता समझा कर सत्य का ज्ञान देता है, सत्य को लखाता है और परखाता है और कल्याण साधना के पथ पर चलाता है। जिसका सत्य ज्ञान मन इंद्रियों से परे ले जाने वाला सदा सहायक तथा परम सुखदायक है, जो सर्व दुख बंधनों संशयों से छुड़ाता है, ता हुआ अनंततः परम शांति एवं सदगति मोक्ष उपलब्ध कराता है। ऐसे गुरु पूर्ण सत्यानुभवी सदाचारी सत्य में प्रतिष्ठित और सत्य ज्ञानोपदेश करने वाला सद्गुरु कहलाता है। जीवन में सत्य एवं सार क्या है? अज्ञान स्थिति के रहते सत्य एवं सार की बात ठीक से समझ नहीं पड़ती, परंतु ज्ञान स्थिति में सत्य सार वस्तु का प्रत्यक्षीकरण अथवा अनुभव साक्षात्कार हो जाने पर आप ही समझ आ जाती है। समझाया जाता है उसे जानने तथा अनुभव के क्षेत्र में लाने के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान ग्रंथों में वर्णित है एवं महापुरुषों का कथन है कि जो बनता बिगड़ता नहीं आदि अंत से रहित नित्य एवं शाश्वत है वही सत्य है और इसके विपरीत असत्य। इसी प्रकार जो आवश्यक सर्वोत्तम सच्चा असली वास्तविक एवं निचोड़ रूप है वही संसार है और इसके विपरीत आसार। देखने समझने में आता है कि सभी प्राणियों का शरीर जन्मता है मरता है, अवस्थाओं में परिवर्तित होता हुआ विनष्ट होने वाला है, परंतु शरीर के भीतर जो अदृश्य अज्ञात है वह अजन्मा अविनाशी नित्य एवं शाश्वत आत्मा है। अतः सत्य एवं सार वस्तु आत्मा है। शरीर जड़ तो आत्मा चेतन है।

0: चेतन आत्मा की सत्ता से शरीर संचालित है। वस्तुतः क्षणभंगुर शरीर के भीतर नित्य चेतन आत्मा ही सब प्राणियों का अपना है, वही उनका सच्चा मूल निज स्वरूप है और वह उनसे कभी बिछुड़ने वाला नहीं है। परंतु अज्ञान के वशीभूत होने से प्राणी उस परम सत्य आत्मा को नहीं जानते मानते और उससे भिन्न तुच्छ शारीरिक एवं सांसारिक विषय भोगों में मरते भटकते हुए दुखी रहते हैं। उस शाश्वत सत्य आत्मा के परम सुख आनंद एवं सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, उसकी तो वही जाने जो उसका अनुभव करता है। संसार शरीर एवं मनेन्द्रियों के भोगों की नश्वरता तथा असारता को समझा परखाकर उसकी आसक्ति छुड़ाकर अगम अगोचर अविनाशी सत्यात्मा का बोध ज्ञान देने और उसका अनुभव साक्षात्कार कराने वाला सच्चा सद्गुरु होता है। जैसे अज्ञान अंधकार का विकराल रूप है, वैसे ज्ञान प्रकाश का परम पावन रूप है। अज्ञानांधकार में स्पष्ट समझ दिखाई नहीं पड़ती, उसमें मूल भ्रांति बनी रहती है और उनमें न तो निश्चिंतापूर्वक सही मार्ग से होकर चला जाता है और न ही वस्तु को खोजा और पाया जा सकता है। परंतु ज्ञान प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसमें कोई मूल भ्रांति नहीं, कोई ठोकर नहीं लगती, कुछ गलत नहीं होता और निश्चिंतापूर्वक सही मार्ग में चलकर निज उद्दिष्ट वस्तु या लक्ष्य पा लिया जाता है। इस प्रकार अंधकार प्रकाश और अज्ञान ज्ञान दो विपरीत स्थितियां हैं, इन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता। यूं समझिए कि प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम ही अंधेरा और ज्ञान की अनुपस्थिति का नाम ही अज्ञान है। अज्ञान अंधकार को बलपूर्वक किसी लाठी डंडे आदि से मारपीट कर भगाया या मिटाया नहीं जा सकता। अज्ञान अंधकार आप ही दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बस वह उपकरण या स्त्रोत होना चाहिए जिससे ज्ञान प्रकाश हो जाए। जिस प्रकार प्रज्वलित दीप ज्योति अंधकार को हरने का साधन है, इसी प्रकार अज्ञान को दूर करने का, उसे मिटा देने का एकमात्र उपाय है ज्ञान, अर्थात सत्य ज्ञान की प्राप्ति। जीवन को ज्योतिर्मय एवं सार्थक करने वाले उस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्र भाव से सत्य ज्ञान प्रदाता सद्गुरु की शरण में याचना की जाती है। तब प्रसन्न होने पर दयालु सद्गुरु उपयुक्त जिज्ञासु याचक के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। सद्गुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौखंड, तीन लोक ना पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। सद्गुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोय, मात पिता श्रुत बांधवा, ये तो घर घर होय। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। जय सद्गुरु, सत्य नाम बंदगी साहे।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।

0: तो श्रोताओ, इसी के साथ आइए समय हो चला है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जुड़ने का एक विशेष कार्यक्रम के साथ, जो होगा मराठी भाषा में और जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं नितिन बापू।
1: 819 kHz, this is Radio Mauritius.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, मंगलवार 15 सितंबर 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई और आज विसर्जन विधि की बारी है। गणेश विसर्जन हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति जल में घुल जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है। वाशिरी में कल गणेश चतुर्थी के राष्ट्र समारोह में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आपसी भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर दिया। बॉम्बू अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिन की हिरासत का हवाला देते हुए आजसू से अपना बयान दर्ज करने की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है, जबकि कंपनी बंद होने की अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय है। और विदेश में हुती लड़ाकों के सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले से तेल आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने के कारण अरब देशों की ईरान के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूज्य और पहचाने जाने वाली देवताओं में से एक हैं। बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता, कला और विज्ञान के संरक्षक तथा बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में उनकी प्रतिमा में गहरा दार्शनिक अर्थ समाहित है। गणेश जी का प्रत्येक शारीरिक अंग आदर्श आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के लिए एक दृश्य रूपक के रूप में कार्य करता है। गणेश जी का पारंपरिक रूप से किसी भी नए उद्यम, अनुष्ठान या यात्रा की शुरुआत में आह्वान किया जाता है, जिन्हें प्रथम पूज्य यानी सबसे पहले पूजने योग्य कहा जाता है। उनकी ये प्रतीकात्मकता भक्तों को याद दिलाती है कि सच्ची सफलता ज्ञान, एकाग्रता, विनम्रता और भावनात्मक दृढ़ता को मिलाने से मिलती है। गणेश जी के प्रतीकों पर विस्तार दे रही है सुमिरा अकबर अली।

गणेश भगवान हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। किसी भी नए काम या पूजा की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। गणेश भगवान शिव जी और माँ पार्वती के बेटे हैं। उनकी कहानियाँ हमें माता पिता का सम्मान, कर्तव्य, समझदारी और सच्चाई का महत्व समझाती हैं। लंबोदर, एक दंता भगवान, गजानन, सुखहर्ता, दुखहर्ता, विघ्नेश्वर, बप्पा, गणपति, उनके अनेक नाम हैं।

0: वे बुद्धि के देवता हैं। जब उन्हें संसार की परिक्रमा करने को कहा गया था, तब उन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की थी, ये कहकर कि वे ही उनके विश्व हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वे अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं। उनका सिर हाथी का और शरीर इंसान का है। उनका बड़ा पेट सुख दुख और जीवन की अच्छाइयों बुराइयों को सहने की क्षमता को दर्शाता है। उनके कान बड़े इसलिए हैं क्योंकि वे असंख्य भक्तों की बात सुनते हैं। उनका वाहन मोचक है और उन्हें मोदक प्रिय है। गणेश उत्सव बहुत ही प्रतीकात्मक है, क्योंकि गणेश भगवान जब पधारते हैं तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन में आनंद और समृद्धि लेकर आते हैं। समस्त हिंदू परिवार विशेषकर मराठी समुदाय के लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
1: गणेश विसर्जन और उत्तर पूजा जीवंत गणेश चतुर्थी उत्सव का भावनात्मक समापन करते हैं, जहां भगवान गणेश का आगमन घरों और समुदायों में आनंद भक्ति और उत्सव का उल्लास लाता है। वहीं विसर्जन उनके दिव्य धाम में उनकी अनुष्ठानिक विदाई का प्रतीक है। गणेश विसर्जन वैराग्य का गहरा पाठ सिखाता है। ये भक्तों को याद दिलाता है कि देवता का भौतिक रूप और वास्तव में भौतिक संसार की हर चीज नश्वर है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति हानि रहित रूप से वापस पानी में घुल जाती है, उसी तरह व्यक्तिगत आत्मा अंततः सर्वोच्च सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है।
0: गणेश चतुर्थी का पर्व समस्त हिंदू परिवार विशेषकर मराठी समुदाय के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल उनकी मूर्तियों की स्थापना के बाद आज विसर्जन विधि की जाएगी। गणपति बप्पा मोरिया ऊर्जा वर्षी लौकरिया यानी अगले बरसतु फिर से आ, इसी गुणगान के साथ गणेश भक्त आज मंगल मूर्तियां लेकर घरों पंडालों और सभाओं से निकलकर जुलूसों में भाग लेंगे और उनके अंतिम गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मुर्शस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के प्रधान दनीराव बिवाजी बताते हैं,
2: मैंना पूजा से कि नापेल उत्तर पूजा कतने को रेमेसे बापा ने को रेमेसे लोट गणेश।
0: सबसे पहले उत्तर पूजा की जाएगी। गणेश भगवान के प्रति आभार प्रकट किया जाएगा कि वे अपना आशीर्वाद देने हमारे यहाँ पधारे हैं। जुलूसों में उनकी मूर्तियों को सबसे नजदीकी नदी या समुन्दर में ले जाएंगे, जहां विसर्जन विधि की जाएगी। रास्तों पर आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ रंगों से भरी परंपराओं से भक्तिमय माहौल छाया रहेगा। देश के विभिन्न इलाकों में भले ही अलग अलग समा बंधा होगा, लेकिन भावनाएं समान रहेंगी। जब बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा तो यही कामना की जाती रहेगी कि बप्पा भक्तों के सारे दुख दर्द ले जाए और बदले में सिर्फ खुशियां छोड़ के जाए।
1: वाशेरी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी वीना राम गुलाम ने कल गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में भाग लिया। इस समारोह की विशेषता मराठी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीकानंद हिडू ने मुक्का में महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग के निर्माण के लिए फेडरेशन को भूमि लीज पर प्रदान करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के साथ मॉरिशस के सहयोग का भी उल्लेख किया। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीकानंद हिडू को सुनते हैं।
3: Salah Lena nous invite tous pour participer dans l'initiative qui est lancée par le Chief Minister Sri Devendra Fernandez instituée BAPPA.org. BAPPA.org c'est une plateforme que le gouvernement de Maharashtra pour collecter tout bon contenu lors de célébration Ganesh Chaturthi à travers le monde. Nous fiers de dire que la Mauritius Marathi Mandali Federation est parmi les bon premiers qui finissent register le BAPPA.org aujourd'hui. Nous participons pleinement l'initiative ensemble avec le gouvernement de l'Inde pour qu'il nous capable

0: fait vous rappeler. Jamais, depuis mon premier ministre, et quand il y a un bon premier ministre, jamais mon empêche de l'enquête. Si un MSM n'a pas de problème l'enquête là, hein? Vous êtes comme ça, je suppose vous connaissez. Pas de problème l'enquête là. Pareil comme le mot junior ministre, pas de problème l'enquête là. Ici, l'enquête est faite, pendant aucune interférence. Tout le temps, on dit, c'est qui une famille, vous appelez les conséquences. C'est comme ça.
1: Financier pour déranger, qui fait une cause d'enregistrement là. J'ai quitté le gouvernement, j'ai dit, on est enregistrement concernant l'école Élysée. Mais c'est là où j'ai dit, et ça, je demande même prendre sanction, mais pas aucune sanction.
0: Non, attendez, pas, il y a moins de gens. C'est moi qui fait terminer aujourd'hui, depuis l'époque du président gouvernement, une cause ça. Qui gagne une diable, ça. Une diable, ça qui est vrai. Hein. Mon cause est Col Élysée. L'idée est fausse. On dit ça, mais on dit ça, apparemment manipulé. Pour faire vous rappeler, je ne les ai manipulés moi-même. Je fais causer, soi-disant, mais fausse. Mais je ne les ai manipulés. Donc, l'enquêter, laisse l'enquête faire.
2: वेरोनिक लोगोविन के पति गुलशन गोविंद ने कल अदालत में अपनी बात रखी जब बॉम्बो अदालत में रेनियन से गांजा आयात करने की साजिश के अस्थायी आरोप को खारिज करने के अनुरोध पर सुनवाई चल रही थी। उसने हिरासत में 47 दिन बिताने का जिक्र किया और आजसु से अनुरोध किया कि वे उनके मामले को गंभीरता से लें और एक बार और हमेशा के लिए उनका बयान दर्ज करें। रोजिल आजसू के सौजयंत जी नारायण से वकील ओबेन मोहंगा पीले द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। वकील रेनियन के अधिकारियों द्वारा प्राप्त एक दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे ताकि ये पता चल सके कि क्या उस दस्तावेज में गुलशन गोविंद का नाम शामिल था। सौजयंत जी नारायण ने स्पष्ट किया कि जांच को प्रभावित करने से बचाने के लिए वे कुछ भी खुलासा नहीं कर सकते। पुलिसकर्मी ने यह भी बताया कि गांजा की खेप रेनियन से रवाना होने वाली थी। उसने 24 घंटे पहले गुलशन गोविंद को रविंद्र चिमाजी के साथ लुमोन में देखा गया था। वकील रूबेन मोहंगा पीले ने कहा कि इसे अपराध साबित करने वाला नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों चचेरे भाई हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कंसेंट्रिक्स में अगली बैठक बुधवार को होगी। प्रबंधन श्रम मंत्री रिजाउद्दीन से मुलाकात करेगा जो गतिविधियों को बंद करने के प्रस्तावित निर्णय से प्रभावित 303 कर्मचारियों को दिए जाने वाले मुआवजे के पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बाद मंत्री आपसी सहमति से समझौता करने के प्रयास में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और नियोक्ता को एक साथ बैठक में बुलाने का इरादा रखते हैं। यदि ये प्रयास असफल रहता है तो ये मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब कंपनी को बंद करने की योजना अस्थायी रूप से 20 नवंबर के लिए निर्धारित है। मंत्री रिजाउद्दीन को सुनते हैं जिनसे बात की शैलिनी अर्बन ने। विवरण सुमेर अकबर अरिका है।
3: हमने कंसेंट्रिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों को बुलाया। बुध को मेरे ही दफ्तर में मुलाकात होगी ताकि हम जान सके कि कंसेंट्रिक्स पूर्व कर्मचारियों को कितना मुआवजा देने का इरादा रखती है। तब हम जायजा लेंगे कि ये पैकेज अच्छा है या नहीं। अगर रकम अच्छी नहीं है तो मेरे मंत्रालय मीडिएटर की हैसियत से बातचीत करेगा। हम एक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कंसेंट्रिक्स लिमिटेड और पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्वीकार्य हो।
2: और 303 प्रभावित नौकरियों से आगे बढ़कर कंसेंट्रिक्स का मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और स्वचालन के सामने मॉरिशस का बीपीओ सेक्टर कैसे प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है। उत्तम की अध्यक्षा जेनी चान इसे ऑटोमेटिक डोमिनो इफेक्ट तो नहीं मानती लेकिन इस बंदी को एक कड़े संकेत के रूप में देखती हैं। उनके अनुसार मॉरिशस को उच्च कौशल और गतिविधियों को अधिक वैल्यू एडेड सेवाओं की ओर बदलने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। उनको सुनते हैं।
4: Chaque entreprise a sa propre réalité, ses propres clients, son propre...
5: हर उद्योग की अलग स्थिति है, अलग ग्राहक हैं, अलग उसूल हैं और मंदी में अलग स्थान है। कंसेंट्रिक्स ने जिन मुश्किलों का उल्लेख किया है उनको मद्देनजर रखना चाहिए एक चेतावनी के तौर पर कि सेक्टर असल चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे दबाव, काबिलियतों की कमी, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असर। हमें सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि मेडागास्कर, फिलीपींस, भारत वगैरह जैसे मुख्तलिफ देशों के मुकाबले बढ़ रहे हैं।
4: La concurrence de différentes destinations comme Madagascar, les Philippines, l'Inde, etc. donc intensifie la concurrence aujourd'hui.

0: और विदेश में हुती लड़ाकों ने सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई और कीमतों में उछाल आया। इस हमले के बाद अरब देशों की ईरान के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। और अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम पर पाई जा रही जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बह रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और सेंट्रल प्लेटो तथा हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी, अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ये मांग की जाती है कि विपरीत दिशा में हवा बहने के कारण ऊंचाई पर काम करते समय और रास्ते पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इन लहरों के कारण विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय निचले तटीय इलाकों में तटीय बाढ़ आ सकती है। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। सूर्योदय 6:06 पर और आज शाम 6:04 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादेर कोन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:51 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। लीन बेटो पांडा मानिकम लीन वाक्वामे विनर्स के पास 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री विजय रामा, जो जयसेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा रामा के घर ली बैतो पांडा मानिकम लीन वाक्वा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रारोड बाहूज पॉम्पलमसेज में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री बिदानन हरदयाल जी तुरा, जो सुखदेव नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर रारोड बाहूज पॉम्पलमसेज से उठाकर पॉम्पलमसेज की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रामफुल लेन गेंदा रोड मेलरोज में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंजनी गनू, पैदाइशी नाम सिनानन और जो अंजनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज से उठाकर मोताय ब्लॉन्श की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। टू कोलिन लाहू कुवों क्यूपिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बगमत उकोई, जो चिफिया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे विकास मंगल के घर टू कोलिन लाहू कुवों क्यूपिप से उठाकर आलिभ्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रायरोड एस्पेरेंस त्रिबुशे में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रागामा वेंकटासामी, पैदाइशी नाम वेंकामा और जो जियाना नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके घर रायरोड एस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। निशान अवेन्यू से कॉन्स्टेंस सेंट पियर में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहित गुदो, जो फिस चिपेया नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला गुदो के घर निशान अवेन्यू से कॉन्स्टेंस सेंट पियर से उठाकर से कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। अयोध्या रोड कुतेज में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री शरदानंद दाहू, जो ब्रूसली नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे अरविंद दाहू के घर अयोध्या रोड कुतेज से उठाकर बेलमोंगुड लेंस की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे

at 11 a.m. Rarut Clémentiame, 67 sal, ki 67 years old, ki shripuni de umuti, jo tayo naam se bhi jane jate the ki mrityu ho gayi hain, unke arthi aaj din ke 11:30 baje, unki patni Shrimati Sudevi Moti ke ghar Rarut Clémentia se uthakar Clémentia ki shamshan bhumi di jayegi cremation today at 11:30. Mimosa Lane, Saint-Rémy Central Flak mein 82 sal ki 82 years old ki Shrimati Ganga Ma Chidambran, पैदाइशी नाम रामदू और जो सूर्या नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके घर में मुसालेन सैगेमी सेंट्रल फ्लैग से उठाकर लावोंचुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30। क्रिमेशन रोड रिपाई में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती निर्मला जोखू, पैदाइशी नाम मधो और जो शीतल नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति देव कुमार सिंह जोखू के घर क्रिमेशन रोड रिपाई से उठाकर रिपाई की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. बालिसों रोड रोजबेल में 33 साल के 33 ईयर्स ओल्ड की जनाब अजहर मोहम्मद शामाताली, जो अजहर मोहम्मद सलाद नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके पिता नसीर शामाताली के घर बालिसों रोड रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 a.m. कोमापू नंबर 2 ऑरिएटा वाकवा में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंबुजम कुमारामासामी, पैदाइशी नाम कंजामाली और जो दिजीरानी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी माँ राजा माही कंजामाली के घर कोमापू नंबर 2 ऑरिएटा वाकवा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। ट्रोबिश रोड त्रियोली में टेम्यूनिस के पास 28 साल की 28 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रियंका देवी जमन, पैदाइशी नाम मोहाबीर और जो जयशीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके नाना जीवन मोहाबीर के घर थ्रोबिश रोड त्रियोली से उठाकर टेम्यूनिस त्रियोली की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:00। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: इस समय 6:57 हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर नजर डालते चलें। तमागे गांव के आसपास के इलाके जिनमें हैं खासकर तमागे विलाज, इन इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 16 सितंबर को सुबह 8:30 से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ तमागे के इलाके मौसल मक्कालोस के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। और अंत में है रोजहिल के कुछ इलाके जिनमें है मौसल मुंबई के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 16 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच

0: बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए इसी के साथ जुड़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के साथ, प्रस्तुत करता है अरविंद।
1: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius. Sports News.
2: अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। लीड्स यूनाइटेड प्रीमियर लीग के टॉप थ्री में आ गया है, जबकि इस सीजन न्यूकासल यूनाइटेड की पहली हार हुई। लीड्स यूनाइटेड 4, न्यूकासल यूनाइटेड 1 और लीड्स यूनाइटेड अभी तक अपराजित अनडिफीटेड है। डोमिनिक कैल्वर्ट लेविन का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा। फर्स्ट हाफ में एक ऑन गोल और कैल्वर्ट लेविन और बोगल का एक एक गोल। लीड्स यूनाइटेड 3-0 से आगे। फिर सेकंड हाफ में दूसरे भाग में ओकाफो का गोल, एक कंसोलेशन गोल न्यूकासल यूनाइटेड का रहा टूरे की ओर से। नए मैनेजर माचियास जेजल की पहली हार है इस सीजन। डोमिनिक कैल्वर्ट लेविन ने कल न्यूकासल यूनाइटेड को खूब परेशान किया। इस सीजन 4 मैचों में 3 गोल स्कोर कर चुका है। इंग्लैंड की नेशनल टीम से बुलावा आने वाला है। स्पेन के ला लीगा में कल रियल बेटिस ने एवेजा कर विलारियाल को 2-1 से हराया। इटली के सेरी आ में कुमु 2-1, एएस रोमा ने एवेजा कर टोरिनो को तोड़ा 2-0 से और इंटर मिलान 5 उदिनीज़े 3। एएस रोमा और इंटर मिलान के पास 12-12 अंक हैं, 12 पॉइंट्स। कुमु के पास है 10 अंक, लाजियो के पास भी 10 अंक हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी वाले मैनचेस्टर डर्बी में सिटी के गोल को लेकर वा ऑफिशियल को कम से कम एक हफ्ते के लिए आराम करने को कहा गया है। इस वीकेंड के लिए उन्हें कोई प्रीमियर लीग मैच के लिए अपॉइंट नहीं किया गया। प्रोफेशनल रेफरी चीफ रेफरिंग ऑफिसर हावर्ड वेब और मैनेजमेंट टीम ने मैनचेस्टर डर्बी वाली घटना को लेकर ये फैसला लिया। एरर ऑफ जजमेंट की और भुगतना अब होगा, पर नुकसान तो यूनाइटेड को हुआ, मैच हार गए। आज और कल काराबाओ लीग कप के तीसरे राउंड के मैच खेले जाएंगे। लिवरपूल खेलेगा टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ, इप्सविच आर्सेनल, रेडिंग ब्रेंटफोर्ड, पीटरबोरो बर्नले, फिर वेस्टहम यूनाइटेड फुलहम। कल के मैच एवर्टन वुल्व्स, फ्लीटवुड टाउन शेफील्ड यूनाइटेड, कोवेंट्री एस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन का स्वागत करेगा और परसों मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नोविच सिटी। क्रिकेट, आज दूसरे T20 मैच की बारी है, टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। पहले मैच में भारतीय टीम की आसान जीत हुई थी। सभी मैच दिल्ली में खेले जा रहे हैं। घुड़दौर अनसंग हीरो मामले में मैनुअल नूनेस को 3 रेस मीटिंग के लिए सस्पेंड किया गया था और 30,000 जुर्माना। अपील के बाद अब सस्पेंशन 2 हफ्तों का हो गया है, मतलब अगली 2 रेस मीटिंग में मैनुअल नूनेस सवारी नहीं कर पाएगा। और किकबॉक्सिंग में 18 से 27 सितंबर तक इटली में वाको यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप लगने वाले हैं। मॉरिशस से माइल लुइस, वेन पेरिन और जादेन ड्राक वहां भाग लेंगे। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, लीड्स यूनाइटेड प्रीमियर लीग टेबल के तीसरे स्थान पे आ गया है। कल उसने 4-1 से न्यूकासल यूनाइटेड को रफा दफा किया। नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस
3: 8.19 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं। बस आशा यही करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे और गणेश जी की कृपा, परम कृपा सभी पर बनी रहे। तो आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही भावनात्मक गीतों के साथ सजाएंगे। सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, पर आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत बिल्कुल हम चंदन के साथ करेंगे, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: श्वास की क्रिया के समान हमारे चरित्र में एक ऐसी सहज क्षमता होनी चाहिए, जिसके बल पर जो कुछ प्राप्य है वह हम अनायास ग्रहण कर सकें, तथा जो कुछ त्याज्य है वह बिना शोभ के त्याग कर सकें।

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: जी हाँ, सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि बिल्कुल आज का ये सफ़र कुछ छोटा होगा, क्योंकि आज है बहुत ही ख़ास दिन, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व, और इसी उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं जिसकी तब्दीलियाँ बिल्कुल आज झलकियों में हम आपको बताते चलेंगे। वैसे फ़िलहाल सुबह का नजराना कार्यक्रम अभी से लेकर 8 बजे तक का ही रहेगा, और इसी के अंतर्गत पुराने गीतों के सफर के साथ 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भोजपुरी समाचारों के बाद बिल्कुल भक्ति धारा कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम। साथ ही साथ एक विशेष कार्यक्रम होगा जो चलेगा उसके तुरंत बाद, और ये होगा मॉरिशस श्री सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की प्रस्तुति में, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सकलानी जी। वैसे आपको बताते चले वेद सुधा का कार्यक्रम आचार्य सुदेश बद्री जी की प्रस्तुति में रहेगा, और बिल्कुल 8 से 9 बजे के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे बिल्कुल भोजपुरी समाचार के बाद, और तुरंत उसके बाद यानी 9 बजे से लेकर एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए रखा जाएगा जो होगा गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मराठी भाषा में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा, और बिल्कुल ये कार्यक्रम चलेगा 9 बजे से लेकर 11 बजे के अंतर्गत। 11 बजे के समाचारों के बाद विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल 11 बजे सभी कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रखे जाएंगे। 11 बजे शमे फरोजा कार्यक्रम लेकर आएंगी सैयदा सुबाई। 12 बजे वर्षा की प्रस्तुति में तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 12:30 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम रहेगा बिल्कुल आरसी की प्रस्तुति में, और जी हां गुजराती कार्यक्रम आज कुछ जल्दी रहेगा यानी 1:15 बजे आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे जो आप हमेशा 1:45 बजे सुनते थे। प्रस्तुतिकरण रहेगी अमिता की, और ठीक 1:30 बजे आप सुन पाएंगे मैंडरीन कार्यक्रम जो होगा डेविड की प्रस्तुति में। आपको याद दिलाते चले बिल्कुल जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, आपकी पसंद जो हर रोज 2:30 बजे शुरू होता है, आज वे शुरू होगा 2:00 बजे। और बिल्कुल ये सफ़र रहेगा 2 घंटे का। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, 2 घंटे का ये सफ़र यानी 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 4 बजे आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम कलाईवानी वीरन की प्रस्तुति में। 5 बजे भूले बिसरे गीत जहाँ पुराने गीतों का सफ़र रहेगा, प्रस्तुतिकरण होगी उषा कौर की। शाम 6 बजे देश विदेश की खबरें। 6:30 बजे पुनः विविध भाषाओं के कार्यक्रम जिसमें चाइनीज भाषा के कार्यक्रम के साथ मैंडरीन का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा जिन की प्रस्तुति में। 7 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी युवरा सेन। 7:30 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा कृतिका की ओर से। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम श्री श्रामा की प्रस्तुति में। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम भक्ति में ये यात्रा में आपका साथ देंगी अनिता। 8:40 पर महफिल शब निसार अख्तर की पेशकश में। रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच, माफ कीजिएगा, रात के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आरजे प्रताप सिंह की प्रस्तुति में, और रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच सुनहरे पल का सफर नीतुषा की प्रस्तुति में। रात के 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट जिसे सजा

बनाते हैं हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो इसी के साथ चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए गीतों के सफ़र में रुख करते हैं और पुराने गीतों के साथ साथ भगवान श्री गणेश को याद करते हुए कुछ लाजवाब गीतों के साथ आज की ये सुबह हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों कहते हैं ना, देर लगेगी मगर सब सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा, दिन अब बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसीलिए बस जीवन में सब्र रखो सब सही होगा। फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी, आवाज है लता जी की।

दोस्तों, रोज आंख खुलना ही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। शिकायतें छोड़कर आभार प्रकट करें, कृतज्ञ रहें, शुक्रगुजार रहें, क्योंकि जो भी ऊपर वाला हमें देता है हमारी भलाई के ओर देता है। जो भी है, जितना भी है, बस उसे हम खुश होने की कोशिश करते रहें। और इसी के साथ चलिए, 7:18 हो चुके हैं, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और बिल्कुल कई सारी जगहों पर पूरी रात के जागरण के बाद आज कई सारे लोग विसर्जन के लिए निकलेंगे। तो आज का दिन सभी के लिए बहुत ही पावन रहे, बहुत ही मंगलमय रहे। और कुछ पुराने गीतों के सफर के साथ भगवान श्री गणेश को भी याद करेंगे और आपके दिल को भी खुश करेंगे कुछ ऐसे ही लाजवाब गीतों के साथ। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत। वैसे हमारे बहुत सारे तलत महमूद के फैन हैं जो पुराने गीतों को बेहद पसंद करते हैं, तो आइए एक फूल चार कांटे का ये गीत हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं लता जी और तलत महमूद की आवाज़ में।

भाई कहते हैं ना, शब्द दिखावा कर सकते हैं पर स्वभाव कभी झूठ नहीं बोलते। तो अपना जो स्वभाव है वो बिल्कुल साफ रखिएगा, नीयत साफ रखिएगा। और इसी के साथ चलिए गणेश जी के पावन अवसर पर, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कुछ ऐसे ही मजेदार गीतों के साथ आज का ये सफर कुछ छोटा रहेगा। लेते हैं ये अगला गीत और ये है फिल्म खानदान से लिया हुआ।

7:31 और बिल्कुल आज छोटी सी बात छोटी सी रहेगी और कुछ जल्दी बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत कम है। और जी हाँ, सुबह का नजराना कार्यक्रम जो 8 बजे तक रहेगा आज का। तो चलिए आज की छोटी सी बात, बस हम यही कहेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल, सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी पर आधारित आज की एक छोटी सी बात लेकर आए हैं हम। और ये कहानी है एक जंगल में सुनहरे पंख वाली एक चिड़िया जो थी वो रहती थी वहां पर। उसका प्रिय भोजन पेड़ के तने पर लगे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वही। और एक दिन वो अपना भोजन तलाश करते हुए निकलने लगी वहां से। रास्ते में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो बहुत ही लालची था और बिल्कुल बक्सा लेकर जंगल से जा रहा था। चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा कि भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। तो आदमी ने उत्तर दिया, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आज सुबह से ही मैं पेड़ के तने में रहने वाले कीड़े को इकट्ठा कर रहा था और इस लकड़ी के बक्से में मैंने उन कीड़ों को भरा हुआ है। अब जंगल के दूसरी ओर से, बिल्कुल दूसरी ओर बसे गांव के बाजार में से ले जा रहा हूं, उन्हें बेचूंगा और बदले में कुछ सुनहरे पंख मिल जाएंगे। तो बाजार में, बाजार बंद ना हो जाए इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। ये सुनकर चिड़िया ने सोचा कि इसे बस एक पंख तो चाहिए और मुझे पेड़ के तने के ये जो कीड़े हैं वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। इस आदमी के पास तो बक्सा भरा हुआ है। तो उसने कहा, मैं अगर आपको एक पंख, एक सुनहरा पंख दे दूं तो क्या आप मुझे ये पूरा बक्सा दे सकते हो? उस तरह मुझे भोजन भी मिल जाएगा, भोजन की मेरी तलाश खत्म हो जाएगी और मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। उसने बस ये प्रस्ताव रखते ही वो इंसान तो तैयार हो गया। चिड़िया ने खुशी खुशी बस अपना एक पंख उसे उतार कर दिया और लकड़ी का बक्सा ले लिया। साथ ही उसने उस आदमी को रोज सुनहरे पंख के बदले कुछ, बिल्कुल उसने कहा कि अगर तुम मुझे रोज इसी तरह से कीड़े ला कर दोगे तो मैं अपना एक पंख तुम्हें हमेशा ला कर निकाल कर दूंगी। उस दिन के बाद उस चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोज कीड़े मिलने लगे और बदले वो अपना एक पंख तोड़कर उसे दे देती थी।

उसके उसके दिन ना बड़े ही मजे से कट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चिड़िया के जो पंख है वो तो खत्म होने लगे और उसे उड़ने में भी अब परेशानी हो रही थी। वो बिल्कुल बेहाल सी हो गई। और जब सारे पंख खत्म हो गए, तब उसे पता चला कि उसने क्या गंवा दिया है। और कुछ ही दिनों में बिल्कुल जब उसके पास तो पंख खत्म हो गए, तो इंसान ने उसे वो कीड़े देना भी बंद कर दिया। और धीरे धीरे करते हुए वो तो बिल्कुल भूख प्यास से तड़प कर मर गई। दोस्तों, आज की ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ी सीख देती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कभी कभी शॉर्टकट से मिली हुई सफलता के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, और इसीलिए हमेशा मेहनत पर हमेशा हमेशा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। और देर सवेर, हाँ बिल्कुल देर सवेर ही सही, मेहनत से सफलता ज़रूर मिलती है और वो सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। तो दोस्तों, जितने भी लोग जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप नाराज़ ना हो, नाखुश ना हो, क्योंकि आप बिल्कुल सही राह पर हैं और आपको इसका परिणाम बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। इसीलिए बस मेहनत से लगे रहें, डटे रहें, और गणपति बाप्पा का नाम लेकर सभी विघ्न दूर हों, यही प्रार्थना करते रहें।

हम से बढ़कर कौन सिलिया हुआ, ये बहुत ही मशहूर सा गाना मोहम्मद रफी साहब, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले, भूपेंद्र सिंह और एस चक्रवर्ती की आवाज में मल्टी स्टार मूवी का ये गाना। और बिल्कुल इसी के साथ आइए, आपके नामों को जोड़ने का समय हो चला है क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, यहाँ पर श्यामा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्यामा रघुनंदन घोंगोप से, साथ है भैया जयप्रकाश, भाभी नम्रता केशव और युधीश, उनकी दो सखियाँ विश्वानी जी और वीना रामफल, माधुरी जी जुड़ चुकी है फ्लोहयाल से, माला सुमारू जी काट्रबोन से, नोएल फोंस से, गायत्री जी आज अपना

जन्मदिन मना रही हैं गायत्री जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बेटा अजय, मामी कल्याणी मोहन, भाभी है शकुंतला, मोताई लोंग से खास सखी गीता बाई, उनकी दो प्यारी बेटियाँ सुनीता और प्रतिमा, दो दामाद अरविंद और रावीन, और सभी नाती पोतों की ओर से गायत्री जी को ढेर सारी बधाइयाँ। नुवेलफोंस से मानती जी जुड़ चुकी है, दो प्यारी बहनें अनंती और आरती, साथ है अनुषा, उर्वशी, गिरीशा, मितिशा, भव्य, पुष्कल और हितांशु। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। घोंघोप से सुनीता जी भी जुड़ चुकी हैं, साथ है उनकी तीन प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना। फ्लिक ऑन फ्लाक से अनीता जी भी जुड़ चुकी है, अपने सभी परिवारों के साथ सभी दोस्तों का नाम जोड़ना चाहती है आज के इस कार्यक्रम में। अनीता लाल जी भी हमारे साथ है मोरालबिया से, लाल जी ईतू गोगा परिवार और नागेश परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। सुदेवी जी मोका से साथ दे रही हैं और उनके सभी पति, उनके सभी बच्चों का नाम और उनके पति का नाम, खासकर उनकी प्यारी बेटी शीतल का नाम आज के इस कार्यक्रम में जरूर जोड़ेंगे, जिनका कल जन्मदिन था सोमवार 14 तारीख को। सभी सिनोद परिवार की ओर से बेटी शीतल को ढेर सारा प्यार। उदय जी गिवेजपुर से जुड़ चुके हैं आपके सभी परिवार के साथ। बॉशेरी से लीला जी हैं साथ देते हुए, गौबुआ से लीलो जी भी जुड़ चुकी हैं, वाकवा से नलिनी जोखन भी बहुत सारी शुभकामनाएं भेजती है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में। रोजहिल से साकुन भी हमारा साथ दे रही हैं, साथ है हमेशा की तरह ईवा और शेन। गीता जी क्योपिप से साथ दे रही हैं और नीता खेदनी हमारे साथ जुड़ चुकी है सैन जूलिया विलास से, आज उनकी प्यारी भगिनी आयुषी का जन्मदिन है और आयुषी के प्यारे पति प्रवीण की ओर से ढेर सारा प्यार। उनको सासू माँ है देवी का, दो प्यारे बच्चे नयन और शुभ, और खासकर पुपू नीता की ओर से ढेर सारा प्यार, ममा रीटा की ओर से और लिस्पेगांव कोची मिलितिया के सभी सुखलाल परिवार, खासकर भाई आदर्श की ओर से भी आयुषी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद सभी खेदनी परिवार की ओर से। लक्ष्मी जी बांबू से जुड़ चुकी हैं और साथ है उनके दो प्यारे बच्चे अक्षय और अश्नी। प्रभा दसोई, आपका भी प्यारा सा मैसेज हम तक आ पहुंचा है, बिलगोस से आप भी साथ दे रही हैं, और यहाँ मैसेज आया है सरिता जी जो है कथुबोन से, सभी को गणपति, जी हाँ, गणेश चतुर्थी के इस पावन उपलक्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं। उषा जी भी हमारा साथ दे रही हैं भमसान से, और साथ ही साथ शोभा जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं अनुषा, शर्वीना और अवनीश अरनवी के साथ, साथ है उनकी प्यारी बहन प्रेमिला जयमंगल और राधा बाल गोविंद जो हैं मोचीदा से। हमेशा की तरह क्लावेट से जुड़ा हुआ है विजय बंधन का परिवार, प्यारी पत्नी रेखा, तीन प्यारी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी, और साथ है उनके सभी दोस्त। माला जरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो चलिए आपको भी हम कहेंगे थैंक यू सो मच आपके प्यार भरे मैसेज के लिए। और वैसे ये आज का जो कारवा है कुछ छोटा है, तो बस आशा यही करते हैं कि आज का दिन सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ऊर्जा लेकर आए, और प्यार भरे इस सफ़र में बस जाते जाते यही हम जोड़ेंगे कि कहते हैं ना कि जिंदगी में कहते हैं परीक्षा जो है वो हमेशा हमें अकेले देनी पड़ती है, और इसका जो परिणाम जो है वो सभी के सामने घोषित किया जाता है। इसीलिए जिंदगी में भी अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी आप काम करते हैं यही सोच के कीजिएगा कि ऊपर वाले की नजर बिल्कुल आप पर है, क्योंकि जिंदगी की परीक्षा जब हम देते हैं तभी परिणाम हमारे हित में ही होता है। अगर आपने परीक्षा में अच्छा काम किया है तो परिणाम भी आपके हित में ही होगा। और चलिए इसी के साथ सफर को यहाँ पर इस गीत के साथ जोड़ते हैं, रूप कुमार राठौड़ साहब की आवाज में रखा हुआ बहुत ही मशहूर गीत, और यही गाना हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी यानी कि रंजानकी के साथ, जो प्रस्तुत करेंगी हमारी धरोहर कार्यक्रम।

0: जी जहाँ जहाँ विराजमान हुए हैं वहाँ सुख समृद्धि सदा बनी रहे, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, सुख शांति बनी रहे और बस सभी का कल्याण हो। केवल वही नहीं पर विश्व भर में जहाँ जहाँ हर इंसान पीड़ित है वहाँ गणेश जी सभी के विघ्न दूर करें। बस हमारी दिल से यही प्रार्थना है सभी के लिए।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
0: तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगली कड़ी के साथ। स्वागत करते हैं किरण जानकी का हमारी धरोहर में।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते सब कोई के प्रणाम। आप सब कोई के स्वागत बा हमारी धरोहर प्रोग्राम में। सबसे आगे था आप सब कोई के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत शुभकामना। आज का हमने इस सीमा पर गांव में शहर में हर जगह बड़ा बड़ा पंडाल में श्री गणेश जी के मूर्ति के दिखत है जा, ढोल के संगे गणपति बप्पा के जय जयकार सुनत है जा। ता हमने के दिल भक्ति और खुशी से भरावता, कहे कि गणेश चतुर्थी के पूजा हमने के देश में बहुत दिन आगे से शुरू हो जाला। आज गणेश चतुर्थी के आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। और आज हमने ये बात पर ध्यान देव अब जा कि का आप जाने ला कि ये त्योहार खाली भक्ति नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के एगो बहुत बड़ा ढाल रहल। आज हमने देखा जा कि कैसे गणपति के ये उत्सव विभाजित भारत के एक सूत्र में पीरों के संगठित करलक। गणेश जी के पूजा सदियों

0: पुराना बा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक गौरव बढ़ावे खातिर मनावल जात रहल। बगैर उस समय में ये त्योहार मुख्य रूप से घर में और राजमहल तक ही सीमित रहल। फिर आल साल 1893 भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के राज रहल। अंग्रेज प्रशासन भारतीय लोग के एकदम मना कर ले रहल राजनैतिक बैठक लगावे पर या कोनो भाषण देवे पर। उ लोग डरत रहलन सा कि अगर भारतीय लोग संगे एकजुट हो जायन सा त सकी भारत में क्रांति मच जाए। ऐसन कठिन समय में अइलन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उ देखलन कि भले ही अंग्रेज राजनीतिक बैठक पर रोक लगैले बा, लेकिन धार्मिक आयोजन के उ लोग नै सकलन सा रोके, ओकर पर कोनो पाबंदी नै रहल। बस बाल गंगाधर तिलक इही कानून से एगो रास्ता निकलन, घर में होवे होला गणेश पूजा के एगो सार्वजनिक गणेशोत्सव के रूप देलन। गणेश भगवान विघ्न हरता हवन, समाज के हर जाति के लोग उनकर पूजा करेलन सा। बाल गंगाधर तिलक उच्च नीच और जाति पाति के भेदभाव मिटावे खातिर बप्पा के पंडाल के एगो जरिया बनेलन। कहे कि जाने ला उ बखत भारत के एकदम विभाजित कर देवल गल रहल, डिवाइड एंड रूल के जो मानसिकता रहल बर्तानी लोग के, उ लोग भारत में एकदम भर दिले रहलन सा। अब इस सब पंडाल में समाज के सब लोग मिलके बैठियन जा, सब कोई संगे मिलके आरती करियन जा, और हिये पर अब गुपचुप आजादी के रणनीति बने लगल। देशभक्ति के गीत गावल जाय लगल, कविता बुरल जाय लगल, सब युवा पीढ़ी में देशभक्ति कूट कूट के भरल जाय लगल। और देखते देखते महाराष्ट्र से शुरू होल ई आंदोलन अब पूरा भारत में छा गल। और जब पहला गणपति जी के बड़ा जुलूस निकलल, तब भारतीय लोग के एकजुट होके उत्साह में देख के बर्तानी लोग दंग रह गएलन सा। उ लोग असमंजस में पड़ गएलन सा। उ लोग के अंदाजा हो गल कि भारतीय जनता के ताकत कितना बड़ा बा, और जोन दिन उ लोग चाहियन सा तब बर्तानी हुकूमत के हिला के रख दियन सा। जब हजारन जना ढोल ताशा के साथ गणपति जुलूस लेके सड़क पर निकलन जा, तब पुलिस उ लोग के रोके नहीं सकल। ब्रिटिश ई देखलक कि उ लोग के साम्राज्य पर अब हियाँ पर सीधा खतरा मंडराय लगल बा। अब जब जुलूस में गणपति बप्पा के नाम ले बा, त जनिया कि गणपति बप्पा भारतीय जनता के फिरंगी आतंक से निपटे में सबसे पहला विघ्न हरता हवन। आप सब कोई के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: फजर के 8 बजल बा। नमस्ते अवजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। भव्य रूप से काल गणेश चतुर्थी मनावल कल और आज विसर्जन विधि के बारी बाटे। गणेश विसर्जन हमनी के वैराग्य के पाठ पढ़ावेला। जोन प्रकार मिट्टी के मूर्ति जल में घुल जाला उही प्रकार भौतिक संसार के हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाला। वाशिरी में गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुला और उनकर पत्नी भाग लेलन। ये अवसर पर ही वो आपसी भाईचारे, धर्म के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर ही जोर देलन। वहीं फेडरेशन के अध्यक्ष मुका में महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग निर्माण खातिर लीज परी भूमि दे के परी सरकार के आभार व्यक्त करलन। मॉरिशस में ऊंचा लहर उठे की चेतावनी जारी करल गल बाटे। जीबीफे के 17 सितंबर के फजर के 10 बजे ले जारी रही। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रही और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंचा लहर उठी। मछुआरा लोग, नाविक लोग और आम जनता के सख्त सलाह दिवल जाता कि वो लोग समुद्र में और समुद्र तट पर ही न जाए के और इस संबंध में नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट सेंटर से प्रवीण रघु की सुनी रचा।
1: नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर जनता के सूचित करता कि मॉरिशस के मौसम विभाग एगो ऊंची लहर के चेतावनी निकल लेबा जोन गुरुवार के सुबह के 10 बजे तक मॉरिशस में लागू रही और आम जनता तथा भक्तों से सतर्कता बरतने की एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील करता है। आपकी सुरक्षा खातिर जनता और मछुआरे से निवेदन बा कि समुन्द्र में न जाए के और समुंदर और समुंदर तट के सब गतिविधि से बच के रहे के। जनता और गाड़ी चालों के मांग बा कि होशियार रहे के समुंदर के रास्ते पर, जैसे कि माकोंडे, रिविया दे गाले, लाप्रेरी, बेजिकाप और बेलोम। नेशनल कोस्ट गार्ड और फिशरीज के अधिकारी लोग पेट्रोल करत वन सा सभी समुंदर तट पर। इमरजेंसी नंबर पुलिस 999 या 148, दमकल विभाग 115, सामी 114।
0: बॉम्बो अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिन के हिरासत के हवाला देते हुए आज से अपन बयान दर्ज करने की मांग करता। मामला के अगला सुनवाई 17 सितंबर ले खातिर स्थगित कर देवल कल बाटी। कंसेंट्रिक्स की 303 प्रभावित कामकरवालों के मुआवजा के पैकेज पर चर्चा खातिर बुध के श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक हुई। यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकी, जबकि कंपनी बंद हुई की अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय बाटी। और दूसरे देश के समाचार में हुती लड़ाकू के सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमला से तेल आपूर्ति बाधित हुई की और कीमत बढ़े के कारण अरब देश के ईरान संगे हुई होला बैठक स्थगित हो गलबा। तो देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। पर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आवाजा मरनी और मैयत की खबर सुन जा। ली बैठो पांडामानिक मलिन वाकवा में 3 कुरी 15 बरिस के सुसन कैंसों के श्री विजय रामा जे जय सैन नाम से जस्ते जाने तात्रा लंजाओ गुजर कल हवन। ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर पत्नी श्रीमती इंदिरा रामा के घरे ली बैठो पांडामानिक मलिन वाकवा से उठा के थामा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। रारोड बाहूज पॉम्पलुमसज में 4 कोरी बरिस के 80 के श्री बिदानन हरदयाल जीतोरा जे सुखदेव नाम से जस्ती जाने जात्रा लंजाओ गुजर कल हवन। ओकर माटी आज दिन के 3 बजे ओकर घरे रारोड बाहूज पॉम्पलुमसज से उठा के पॉम्पलुमसज के शमशान भूमि ले जावा जाए। रामफल रेन गेंदा रोड मेलगोज में 2 कोरी 12 बरिस के 52 के श्रीमती अंजनी

पैदायशी नाम से नानन आज अंजनी नाम से जस्ती जाने ते जात्रा लन जाओ गुजर कर होवन ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर घरे रामफल लेन गेंदा रोड मिल होश से उठा के मोह तैबलॉश के शमशान भूमि ले चावल जाए टूको लेन लारू कुवों क्यू पिप में 4:05 के 85 अंके श्रीमती बगमत उकोई जी चिफिया नाम से जस्ती जाने ते जात्रा लन जाओ

0: J'ai mis charcori bariske 80 ans que je me tire à gama 24 sami, pedaishin am 20 kama, a jigiana nam suggesti janete jatra lenja uzer galhoven. Okar mati aj din ke ek bach ke adha okar ghari ro arod l'espérance trébuché se utha ke piton ke shumshan bhumi le java jai. Nissan Avenue circonstance simple metin korisad bariske 67 ans ke je mohit guda je fils tipe anam se jasti janate chatra lancha o guzar kala hwan kar mati aj din ki du bach ke adha o kar patni shrimati nirmala guda ke ghare Nissan Avenue circonstance simple se utha ke wahi ke shmshan bhumi de chaval jai Ayodhya Road Cottage में 3:08 पर इसके 68 अंक के श्री शरदानन दाहू जी ब्रूसली नाम से जस्ते जाने तचात्र रंजाओ गुसर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बजे उकर बेटा अरविंद दाहू के घरे अयोध्या रोड कोटेज से उठा के बेल मोकुद लेंस की शमशान भूमि ले जावा जाए रा रोड क्लेमेंसिया में 3:07 पर इसके 67 अंक के श्री पुनी दे उमती जेतायो नाम से जस्ते जाने तचात्र रंजा ओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा होकर पत्नी श्रीमती सुदेवी मोती के घरे रा रोड क्लेमेंसिया से उठा के वहीं की शमशान भूमि ले जावा जाए मेमोसा लेन सैन रेमी सेंट्रल फ्लैक में 4:02 दुबर इसके 82 अंक की श्रीमती गंगामा चिदम्बरन पैदाइशी नाम रामदू आज सूर्या नाम से जस्ती जाने तचात्र लंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा उकर घरे मेमोसा लेन सैन रेमी सेंट्रल फ्लैक से उठा के लावंचुआ की शमशान भूमि ले जावा जाए क्रोमिशन रोड रिपाई में दुकोरी 12 पर इसके 52 अंक की श्रीमती निर्मला जोखू पैदाइशी नाम माधो और जो शीतल नाम से भी जाने तचात्र लंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर पति देव कुमार सिंह जोखू के घरे क्रोमिशन रोड रिपाई से उठा के वहीं की शमशान भूमि ले जावा जाए बालिसों रोड रोजबेल में 1:13 बरिस के 33 अंक के जनाब अजहर मोहम्मद शमत अली जे अजहर मौशन सलाद नाम से जस्ती जाने तचात्र लंजा इंतकाल कर कल हवन ओकर जनाजा आज फजर के 10 बजे ओकर पिता नासिर शमत अली के घरे बालिसों रोड रोजबेल से उठा के यूनियन पार्क के कब्रिस्तान ले जावा जाए कौमापू नंबर 2 अंहिता वाकवा में दुकोरी 17 बरिस के सेकंड से तौके श्रीमती अम्बुजम कोमाहासामी पैदाइशी नाम कांजामाले आज देसी रानी नाम से जस्ती जाने तचात्र लंजाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन की 2 बज के आधा ओकर माँ राजा माही कांजामाले के घरे कौमापू नंबर 2 अंहिता वाकवा से उठा के फिनिक्स की शमशान भूमि ले जावा जाए त्रोबिश रोड त्रियोली में 1:08 पर इसके 28 अंक की श्रीमती प्रियंका देवी जमन पैदाइशीना मोहाबेर आज जयशीना नाम से जस्ते जाने तचात्र लंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 12 बजे उकर नाना जीवन मोहाबेर के घरे त्रोबिश रोड त्रियोली से उठा के त्यामिनिस त्रियोली की शमशान भूमि ले जावा जाए रॉयल रोड ग्रैंड रिट्रीट में 3:18 पर इसके 78 अंक के बीबी अफरोज मोहम्मद हुसैन पैदाइशी नाम क्रकुमान आज अफरोज नाम से जस्ती जाने तचात्र लंजा इंतकाल कर कल हवन उकर जनाजा आज दिन के 2 बजे उकर बेटा मुसान मोहम्मद हुसैन के घरे रॉयल रोड खान खुतरत से उठा के रिश मौके कब्रिस्तान जावल जाए शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हमने संवेदना प्रकट करना थे जा
1: ये है रेडियो मॉरिशस

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8:10 होने जा रहे हैं और इसी के साथ आप सभी का पुनः हम स्वागत करते हैं भक्ति धारा कार्यक्रम के अंतर्गत जो चलेगा 9 तक। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमन कर जोड़ वंदन स्वीकार करें। आप सभी को गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, जहां पर भक्तिमय गीतों के साथ इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। उसके तत्पश्चात आप सुन पाएंगे आचार्य सकलानी जी को गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम में।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ओम इंद्रम वयम महाधन इंद्रमर्भे हवामहे युजम वृत्रेषु वज्रिणम। उपासक को चाहे सांसारिक ऐश्वर्य की आवश्यकता हो चाहे पारमार्थिक ऐश्वर्य की, इन दोनों की उपलब्धि के लिए उसे जी जान से तप करना पड़ता है, नानाविध बाधाओं को सहना पड़ता है। समय समय पर उसको इस विषय में उस परमपिता परमेश्वर का आह्वान भी करना होता है। ओम आघाये अग्निमिन्धते स्त्रिणन्ति बर्हिनानुषक् येषामिन्द्रो युवा सखा। साधकों को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातः सायं प्रकाश स्वरूप प्रभु को ध्यान समाधि द्वारा अपने हृदय में प्रकाशित करें और अपने उत्तम एवं समान गुण कर्म स्वभावों से सदा अजर अमर नित्य पवित्र प्यारे प्रभु को अपना सखा मित्र बनाए। ओम भिन्धे विश्वा अपद्विष परिबाधो जहि मृधा वसुस्पार्हं तदा भर। साधक को चाहिए कि वह प्रभु से जैसी जैसी प्रार्थना करे वैसा वैसा वह जी जान से पुरुषार्थ भी करे। इस प्रकार अपने पूर्ण पुरुषार्थ से और प्यारे प्रभु की कृपा से जब वह अपने भीतर की समस्त द्वेष भावनाओं को और समस्त हिंसक वृत्तियों को निकाल बाहर कर विनष्ट कर देगा, तब वह सब जग से न्यारा प्रभु उसे वह इस प्रहरणीय धन वैभव देगा कि जिससे वह सर्वथा सर्वदा तृप्त हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। ओम समस्यमन्य वे विश्वा नमन्त कृष्टया समुद्रायेव सिंधवः। सच्चे साधक अपने चित्त रूपी भूमि में हल चलाकर उसको कोमल कर साफ सुथरा उसको खाद पानी देकर फिर उसमें सद्गुणों के बीज बोकर उसे हरा भरा करते रहते हैं। ऐसे साधक अपने प्राण प्रिय प्रभु की ओर अबाध गति से निरंतर ऐसे बढ़े चले जाते हैं।

जाते हैं, जैसे कि ये नदियां बिना कहीं अटके भटके समुद्र की ओर बही चली जाती है। ओम शांति शांति शांति।

हिरण्यगर्भ समवर्ततग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीद् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विषा विधेम। प्रिय श्रोतागण, यह मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल के हिरण्यगर्भ सूक्त का प्रथम मंत्र है। यह सूक्त 10 मंत्रों का है और इसका देवता कह अर्थात प्रजापति माना गया है। मंत्र का छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र में वेद अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित करता है, कस्मै देवाय विषा विधेम, अर्थात हम किस देव, किस परम सत्ता के लिए अपने हवि, अपने कर्म, अपनी उपासना को समर्पित करें। वैदिक उत्तर यह है कि वह सत्ता कोई सीमित शरीरधारी आकृति वाला अथवा किसी विशेष स्थान में रहने वाला देव नहीं, बल्कि वह एक परमेश्वर है जो संपूर्ण जगत का कारण, स्वामी, धारक और नियामक है। श्रोताओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र के भाष्य में स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आरंभ से पूर्व

हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही विद्यमान था। वही इस उत्पन्न हुए जगत का एकमात्र स्वामी है और वही पृथ्वी से लेकर द्युलोक अर्थात सूर्य आदि लोकों तक संपूर्ण जगत को रचकर धारण करता है। इसलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। श्रोताओं, हिरण्यगर्भ शब्द को समझना इस मंत्र की आत्मा को समझने के समान है। सामान्य संस्कृत में हिरण्य का अर्थ स्वर्ण अथवा अत्यंत मूल्यवान तेजस्वी पदार्थ से संबंधित हो सकता है और गर्भ का अर्थ अंतस्थित आधार आश्रय उत्पत्ति स्थान या सामर्थ्य हो सकता है। परंतु वैदिक व्याख्या में इस शब्द को केवल सोने का अंडा समझना उचित नहीं है। महर्षि दयानंद ने हिरण्यगर्भ को परमेश्वर का नाम बताते हुए समझाया कि जिसमें सूर्य आदि तेजस्वी लोक उत्पन्न होकर स्थित होते हैं अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों की उत्पत्ति का आधार हैं वह हिरण्यगर्भ कहलाता है। उनके अनुसार यहां हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। इसलिए इस मंत्र का वैदिक दर्शन हमें किसी एक निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की ओर ले जाता है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है। मंत्र कहता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे अर्थात सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही विद्यमान था। यहां अग्रे का आशय सृष्टि के प्रकट होने से पूर्व की अवस्था है। इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर किसी एक समय जन्म लेकर अस्तित्व में आया है। वैदिक सिद्धांत में परमेश्वर अजन्मा और नित्य है। सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है, उसका परिवर्तन होता है और प्रलय होता है, किंतु परमेश्वर इन परिवर्तनों से परे रहता है। महर्षि दयानंद की सृष्टि विद्या में भी यह विचार मिलता है कि प्रलय के समय जगत कारण रूप में रहता है और पुनः सृष्टि के समय परमेश्वर की व्यवस्था से प्रकट होता है। इस दृष्टि से अग्रे हमें यह शिक्षा देता है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह स्वतंत्र और निराधार नहीं है। उसके पीछे एक बुद्धिमान नियमबद्ध और सर्वव्यापक व्यवस्था है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। अगला भाग है भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। भूत से यहां उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों और प्राणियों का बोध होता है। पति का अर्थ स्वामी रक्षक पालक और नियामक है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। वेद यहां अनेक स्वतंत्र सृष्टिकर्ताओं की कल्पना नहीं करता। वह कहता है कि संपूर्ण जगत का परम स्वामी एक है। इसका संबंध वैदिक एकेश्वरवाद से है। परमेश्वर एक है, यद्यपि उसके गुणों और कर्मों के आधार पर उसके अनेक नाम हैं। इसी कारण वेद में परमेश्वर को अग्नि मित्र वरुण वायु आदित्य हिरण्यगर्भ प्रजापति अनेक नामों से संबोधित किया जा सकता है, परंतु उसके अनेक ईश्वर सिद्ध नहीं होते। महर्षि दयानंद ने हिरण्यगर्भ को परमेश्वर के नामों में सम्मिलित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न वैदिक नाम प्रकरण अनुसार उसी एक परमेश्वर के विभिन्न गुणों और कर्मों को प्रकट करते हैं। स दाधार पृथ्वीम द्यामुते

इमाम, अर्थात वही परमेश्वर पृथ्वी और द्युलोक सहित इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। धारण का अर्थ केवल किसी वस्तु को हाथ में पकड़ना नहीं है। परमेश्वर जगत को अपने नियमों, शक्ति और व्यवस्था से धारण करता है। पृथ्वी अपनी गति में है, सूर्य अपनी गति में है, ग्रह अपने अपने नियमों के अनुसार चलते हैं, ऋतुएं अपने क्रम से आती हैं और प्रकृति में कारण कार्य का संबंध बना रहता है। यह संपूर्ण व्यवस्था उस परम सत्ता की सार्वभौमिक व्यवस्था का संकेत करती है। श्रोताओं, आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्मांड में व्यवस्था, नियमबद्धता और परस्पर संबंध को स्वीकार करता है। वैदिक मंत्र इस व्यवस्था को देखकर मनुष्य को उस मूल सत्ता के चिंतन की ओर प्रेरित करता है, जो संपूर्ण व्यवस्था का आधार है। श्रोतागण, यहां से एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। यदि परमेश्वर संपूर्ण जगत को धारण करता है, तो मनुष्य को भी इस जगत के प्रति उत्तरदायी होकर जीना चाहिए। पृथ्वी केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह हमारे जीवन का आधार है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा, जल का संरक्षण, वायु की शुद्धता, वनस्पतियों का संवर्धन और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग वैदिक भावना से अनुकूल आचरण है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देव के लिए हवि से यज्ञ करें। यहाँ कह अर्थात कस्मै प्रश्नवाचक रूप में उस परम सत्ता की खोज को व्यक्त करता है। संपूर्ण हिरण्यगर्भ सूक्त में यही प्रश्न बार बार आता है और अंतिम मंत्र में प्रजापति के रूप में उसी परम सत्ता की ओर संकेत मिलता है। हविषा केवल यज्ञकुंड में डाली जाने वाली सामग्री तक सीमित नहीं है। श्रोताओं, व्यापक वैदिक दृष्टि से मनुष्य को अपने जीवन की श्रेष्ठ वस्तुओं को श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। धन हो तो उसका एक भाग लोकहित में लगाया जाए, ज्ञान है तो उसका प्रचार किया जाए, शक्ति हो तो निर्बलों की रक्षा में लगाई जाए और समय हो तो समाज और राष्ट्र के कल्याण में लगाया जाए। श्रोताओं, इस प्रकार यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने की क्रिया नहीं, बल्कि त्याग, सहयोग, सेवा और लोकहित की जीवन पद्धति बन जाता है। श्रोतागण, यह मंत्र मनुष्य को बाहर की अनेक वस्तुओं में परम सत्ता खोजने के स्थान पर उस एक ईश्वर को जानने की प्रेरणा देता है, जो संपूर्ण जगत का आधार है। अतः हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे मंत्र का मूल संदेश यह है कि संपूर्ण जगत के मूल में एक परम चेतन, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस मंत्र की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि ईश्वर की उपासना केवल शब्दों और कर्मकांड तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे जीवन में सत्य, ज्ञान, सेवा, त्याग, न्याय, पर्यावरण संरक्षण और लोकहित में और लोकहित के रूप में प्रकट हो। इस प्रकार हिरण्यगर्भ मंत्र केवल सृष्टि के आरंभ का वर्णन नहीं करता, यह मनुष्य को यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है कि जिस परम सत्ता ने इस विराट जगत को धारण किया है, उसके प्रति मेरा जीवन का उत्तरदायित्व क्या रखता है। यही प्रश्न मनुष्य को उपासना से कर्मयोग, कर्मयोग से चरित्र और चरित्र से लोक कल्याण की ओर ले जाता है। यही इस मंत्र की

0: शाश्वत वैदिक प्रासंगिकता है। श्रोतागण, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष धन्यवाद है। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

रक्ताम वरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवा करकरोज्ज्वलकाय कांतं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि श्री गणेशाय नमः। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में भक्ति धारा के इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्री गणेश, भगवान गणपति। श्रोताओं, मानव मात्र का ये स्वभाव है कि वो अपने हर प्रकार के कार्य को किसी विघ्न बाधा के बिना पूरा करना चाहता है। कार्य की पूर्णता के लिए ही वो विविध प्रयत्न भी करता है और अपनी शक्ति एवं भक्ति के अनुसार देवों की आराधना कर मंगल कामना करता है। देव पूजा के अवसर पर तथा अन्य मांगलिक कार्यों पर सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा का विधान है। उत्तर भारत से लेकर के सुदूर दक्षिण भारत तक लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं। जहाँ कुछ लोग अपनी नित्य पूजा में श्री गणेश की विधिवत आराधना करते हैं, वहीं कुछ लोग आवश्यक मंगल कार्यों के अवसर पर भगवान श्री गणपति की और वंदना करते हैं। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नेश्वर कहा जाता है। इसका यही तात्पर्य है कि इनकी पूजा करने से मानव अपने कार्य को बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा कर लेता है। भगवान गणपति का जो पूजन विशेष रूप से श्री गणेश चतुर्थी पर तो आजकल जो हैं और बहुत धूमधाम से और पूरा हिंदू संसार विशेष पूजन करता रहता है, है ना, बड़े धूमधाम से। सामान्यतः पूरे देश में तथा सारे हिंदू संसार में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश की पूजा के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावना विद्यमान है। भगवान गणेश जी को सबसे अधिक बुद्धिमान देव के रूप में माना जाता है। एक बार श्रोताओं, जब सभी देवों ने मिलकर के एक निश्चय किया कि जो हमसे पहले पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्बार और परिक्रमा कर लेगा वही देवों का प्रमुख माना जाएगा, तब श्री गणेश ने अपने वाहन मूषक पर सवार होकर के अति शीघ्र अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा पूरी करके देवों के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, क्योंकि माता पिता ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। उनकी इस और बुद्धिमत्ता से सभी देव आश्चर्यचकित हो गए।

और उन्हें प्रमुख घोषित करते हुए किसी भी पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा का विधान किया। दीपावली के पर्व पर श्री लक्ष्मी के पूजन के पूर्व जो है भगवान गणपति की पूजा इसलिए की जाती है श्रोताओं की वे प्रसन्न होकर के आराधक को सुबुद्धि प्रदान करे। प्रत्येक व्यक्ति इसीलिए तो भगवान गणपति की निरंतर पूजा करते रहते हैं, क्योंकि भगवान गणपति जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। कहा है ना, यजुर्वेद ने कहा कि

के हे परमात्मन, आप सभी के रक्षक और संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले हैं। आप सभी प्रिय पदार्थ के स्वामी हैं और हमारे प्रिय हैं। हे प्रभु, आप सभी प्रकार के ज्ञान एवं संपत्तियों के भी स्वामी हैं। अतः हम आपका आवाहन करते हैं, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं और सदा एक रस एक जैसे रहते हैं, एक रस रहते हैं। संपूर्ण विश्व को अपने अंदर रखने वाले आपको हम अच्छी प्रकार से समझ सकें। श्रोताओं, शास्त्रकर्ताओं ने कहा कि हे गणपति, ओम नमस्ते गणपतये। हे गणपति, आपको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। हे गणपति, आप ही आँखों से दिखाई देने वाले ब्रह्म हैं, आप ही साक्षात ब्रह्म हैं, है ना? ऐसा कहा है कि नमस्ते गणपतये त्वमेव।

केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हे गणपति, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष रूप से वही चेतन तत्व हैं। आप ही केवल सृष्टि को बनाने वाले हैं। आप ही केवल सृष्टि को धारण करने वाले हैं। आप ही केवल सृष्टि का संहार करने वाले हैं। आप ही सब प्रकार ब्रह्म के रूप हैं। आप ही सचमुच नित्य रहने वाले आत्म तत्व हैं। कहा है कि गणेशो वै ब्रह्म तद विद्यात् यदिदं किं च सर्वं भूतं भव्यं जायमानं च यत् सर्वमित्याचक्षते अस्म

कहा कि हे गणेश ही ब्रह्म हैं, उन्हें समझिए। जो कुछ भी उत्पन्न हो चुका है, होगा और हो रहा है, वो सब कुछ गणेश ही हैं, इससे परे कुछ नहीं। जो इसी प्रकार समझता है वही भगवान गणेश को जानता है और ब्रह्म को पा लेता है। भगवान गणेश को नमस्कार हो, ऐसा कहा है। गणेशो वै सद जायत तद वै परब्रह्म तद विद्याप्नोति परम यदैशाभ्युक्ता यदनादिभूतं यदनन्तरूपं यद्विज्ञानरूपं यद्देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते न वै कार्यं कारणं न तत्समश्च।

तच्चित्तस्वरूपं निर्विकारं अद्वैतं च तन्मायाशबल मज नीत्याह अनेन यथातश्च अप्नो नीति ध्वनिरभूत।

सृष्टि के आरंभ में गणेश ही सत रूप में प्रकट हुए। उनको जानने वाला ही परब्रह्म को पा लेता है। इसी बात को यूं कहा गया है, जिसका आरंभ नहीं होता है, जिसका अंत नहीं होता है, जो विज्ञान रूप है, जिसकी उपासना सब देव ब्रह्म और ज्येष्ठ ब्रह्म के रूप में करते हैं, जिसको कोई नहीं बनाता, जो अपने कार्य में साधनों की अपेक्षा नहीं रखता, जिसके समान या अधिक कुछ भी और दिखाई नहीं देता, उसी से सूर्य डर करके उदित होता है, उसी से डर करके वायु गति करती है, उसी से भयभीत अग्नि स्थित है, वही चेतन स्वरूप विकारहीन अद्वैत है, उसी ने माया से चित्त जीव को उत्पन्न किया है इत्यादि। इसी से ज्यों ही अंधकार प्रकट हुआ, त्यों ही ओम की ध्वनि हुई। वही हाथी के आकार का है, वही अवर्णनीय माया है जो संसार का बीज कही जाती है, वही प्रकृति ही गणेश है। कहा अनेन यथा तमश्चतश्चोमीति ध्वनिरभूत सवै गजाकारः अनिर्वचनीया सैव माया जगद्बीजमित्याह सैव प्रकृतिरिति गणेश इति, है ना, कि वही अवर्णनीय माया जो संसार का बीज कही जाती है, वही प्रकृति ही गणेश है। इसीलिए कहा

सर्वं येतद् गणेशो यमात्मा ब्रह्मेति। ओम ही एक अक्षर वाला संपूर्ण ब्रह्म है, भूत वर्तमान और भविष्य है, मैं होने वाला सब कुछ ओंकार ही है और वो सब कुछ गणेश ही है, यही आत्मरूप ब्रह्म है। ओम त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि। हे भगवान, हे गणपति, आप वाणी रूप हैं, आप चेतना स्वरूप हैं, आप सतचित और आनंद स्वरूप हैं तथा आप अद्वितीय हैं। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। हे भगवान, अरे आप ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। श्रोताओ, ऐसे भगवान श्री गणेश जिनके लिए कहा कि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वतस्थस्तति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। हे भगवान, हे गणेश जी, ये संपूर्ण संसार आपसे उत्पन्न होता है, ये संपूर्ण संसार आप ही और इसको धारण करते हैं, आपके द्वारा ही धारण किया जाता है, ये संपूर्ण संसार आप में ही लीन हो जाएगा, ये सारा संसार आप में ही लौट करके आ जाएगा। हे भगवान, हे गणपति महाराज, आपकी जय हो, जय हो।

तद्विनायकं परम ज्योतिरसोहम श्री गणेश को सदा और प्रकाशमय समझो। वे परिश्रम रहित बंधन से शून्य सभी दोषों से रहित आनंद रूप सबका आश्रय रूप सत्य स्वरूप हैं। श्रोताओ ऐसे विनायक हैं और प्रकाशमय हैं वे ही सत्य स्वरूप भगवान महागणपति हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। शांति ही शांति।

तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को इसी भजन के साथ समाप्त करेंगे। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय रहे, यही शुभकामनाओं के साथ, गणेश चतुर्थी की पावन मंगल कामनाओं के साथ। आप सभी को याद दिला दे, अभी थोड़ी ही देर में आप जुड़ेंगे एक विशेष कार्यक्रम के साथ, जो चलेगा 9 बजे से 11 बजे के अंतर्गत मराठी भाषा में, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी सीताबाई दरमिया द्वारा। आप उनका साथ दीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। ये जुड़ते हैं संक्षिप्त समाचारों के साथ। गणेश चतुर्थी मनाई गई और आज विसर्जन विधि की बारी है। गणेश विसर्जन हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति जल में घुल जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है। वाशिरी में गणेश चतुर्थी के राष्ट्र समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आपसी भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर दिया। मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों, नाविकों और आम जनता से मांग की जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है, जबकि कंपनी बंद होने की अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय है। और विदेश में यमन संघर्ष सोमवार को एक बार फिर भीषण मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान समर्थित हुतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस हमले में 13 लोग घायल हो गए और कम से कम 7 रिहायशी मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India. Namaste to the adventurous millennials and brave moms. Et à tous ceux qui aiment manger de délicieux plats indiens sans avoir à les préparer. Avec les plats Haldiram's, la marque renommée de l'Inde, manger indien is as easy as egg dhoti. Vous voulez un aloo paratha ou un tandoori garlic chili naan? No more kitchen battles. It's ready in a flash. Un bon curry, un dal makhni ou un paneer tikka masala? Haldiram's is in your fridge and ready to eat. Alors quand vous êtes hungry, no worries avec Haldiram's. Haldiram's, the authentic taste of India in no time. Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India.

0: se connecte en villa, un bon panir bata masala avec un naan. Yummy!
1: Tu connais qui me fait avec panir, moi? Ban brochette. Nous mettons mariné dans yaourt avec la poudre tandoori. Griller le barbecue, il est extra bon.
2: Pati, qui te fait capable de faire avec naan et panir? Frire, nature ou en bloc, capable de préparer naan et panir pour tout repas et pour tout ce qui ont envie de manger. Naan et panir, le vrai panir, fait avec du lait de vache frais.
3: So good, so pure, it's Nana.
4: श्रोत्यानो मनात कितीही चिंता असला तरी गणरायाच्या चरणी सोपवल्या की मन हलके होते. चला अशाच श्रद्धेच्या भावनेतून हे भक्तिमय गीत ऐकूया. शरणम मोरया बप्पा शरणम मोरया, प्रशांत विश्वकर्मा व सहगायकांच्या आवाजात.

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: दिन के 11 बज चुके हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से विधिमा के साथ. आपको नमस्कार.
3: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार. भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई, जबकि आज गणपति विसर्जन की विधि संपन्न की जा रही है. गणेश विसर्जन हमें वैराग्य और जीवन की नश्वरता का संदेश देता है. जिस प्रकार मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा जल में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर वस्तु अंततः सर्वोच्च चेतना में समा जाती है. वाशिरी में कल आयोजित गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री डॉ.

0: नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आपसी भाईचारे, सभी धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए दूरदर्शी सोच के महत्व पर जोर दिया। कल रात मिडलैंड्स में एक सड़क दुर्घटना पेश आई। घटनास्थल पर एक महिला की मौत तब हुई जब वाहन एक पेड़ से जा टकराया। वाहन चालक और एक अन्य यात्री घायल हुए हैं। मॉरिशस में ऊंची लहरों को लेकर चेतावनी जारी की गई है जो गुरुवार 17 सितंबर की सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी गई है कि वे समुद्र में जाने और समुद्र तटों के करीब जाने से बचें। और विदेश में उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: शम्मे फरोजा।

और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा पानी और पीने को भी, और हमने उनको अहलो आयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। और हमने कहा अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो, फिर उससे मार लो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको साबित कदम पाया, बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे।

ये नसीहत है और परहेजगारों के लिए तो उम्दा ठिकाना है, हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और मशरूबात मंगाते रहेंगे, और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरे होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था, ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा।

0: रंज।
1: ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे।

ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ घुसती चली आ रही है, इनको खुशामदीद न कहा जाए। ये दोजख में जाने वाले हैं, कहेंगे बल्कि तुम्ही को खुशामदीद न कहा जाए, तुम्ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है।

वो कहेंगे ऐ परवरदिगार जो इसको हमारे सामने लाया है उसको दोजख में दुगना अजाब दे, और कहेंगे क्या सबब है कि यहां हम उन लोगों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार करते थे, क्या हमने उनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं। बेशक ये अहले दोजख का झगड़ना बरहक है।

कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं और अल्लाह अकेले और गालिब के सिवा कोई माबूद नहीं। जो आसमानों और जमीन और जो मखलूक उनमें है सबका मालिक है, गालिब है, बख्शने वाला।

मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था, मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं।

0: जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया।
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي

अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इबलीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे।

फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा।

कि जिस शख्स को कुरान मजीद की मशगूली की वजह से ज़िक्र करने और दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, उसको सब दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ और अल्लाह ताला के कलाम को सब कलाम पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: आज की इस बाबरकत महफिल में हम जिक्र करेंगे एक ऐसी अजीम रूहानी शख्सियत का जिनका नाम सदियों से अहले ईमान के दिलों में मोहब्बत व अकीदत के साथ जिंदा है। जी हाँ, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म दस्तगीर। तो आइए समात फरमाइए इसी हवाले से ख़तीब व इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद खान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहाबिही अलैहिम अजमाईन अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بن تصلي عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه بارك وسلم। سامع حضرات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। الحمد لله ہم نے ماہ ربیع النور شریف کے हवाले से हुजूर की शान में जो कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला अल्लाह उसे कबूल फरमाए और हुजूर नबी करीम सल्लम की लाइफ कुरान लाइफ दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वो रबीउल अव्वल है और इस वक्त हम रबीउल आखिर में दाखिल हो रहे हैं, यानी पहली फसल बहार इस्लाम की हुजूर नबी करीम सल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ मंसूब है। रबीउल आखिर दूसरी फसल बहार जो है जिसे आखिर कहते हैं, ये औलिया अल्लाह के हवाले से है, यानी हुजूर नबी करीम सल्लम की नबूवत रिसालत लाइफ कुरान की खुली हुई किताब कुरान मुकद्दस, इन सब चीज़ों को औलियाए कामलीन क़यामत तक इस मिशन पर काम किए हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला।

इसलिए वो रबीउल अव्वल है, इस्लाम की इब्तिदा, और ये रबीउल आखिर है, इस्लाम की इंतहा, इला यौमिल क़यामा। तो आज औलिया कामलीन के हवाले से, चूँकि ये मुक़द्दस महीना जैसे नज़र आता है, और शाकान औलिया कामलीन बिलख़ुसूस सरदार औलिया सैयदना गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर रदी अल्लाह उनकी याद आती है, और इन्हीं की नस्बत से मसाजिदों में, घरों में, मदरसों में महाफिलों का इनकाद होता है, इंतज़ाम होता है। लोग सैयद गौस आज़म रदील्ला तआला की सीरत को सुनते हैं और उस पर अमल की कोशिश करते हैं। तो क़ुरान हकीम ने भी औलिया कामलीन के ताल्लुक़ से सूरह यूनुस 11वें सिपारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना गम। वो कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे, परहेजगारी को अख्तियार किया। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया फिल आखरा, उन्हें खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, ये बड़ी कामयाबी है। औलिया अल्लाह की दुनिया को क्या हाजत है, एक सवाल है जिसे आलम अजसाम में यानी बास जिस्म मोहताज हैं, और बास मोहताज इले हैं, बास फैज लेने वाले हैं और कुछ जिस्म फैज देने वाले हैं। जैसे आफ्ताब और बारिश फैज़ देने वाले हैं, और ज़मीन और यहाँ की हरी भरी खेतियाँ बागात फैज़ लेने वाले, इसी तरह आलम रूहानियत में अम्बिया कराम और उनके ज़रिए से उलमा मशायख औलिया अल्लाह फैज़ देने वाले, और सारा आलम उनका हाजतमंद यानी फैज़ लेने वाले हैं। जिसे दुनिया को बारिश और आफ्ताब की हमेशा ज़रूरत है, इसी तरह उलमाए हक़ औलिया कामिलीन की भी सख्त हाजत। हुज़ूर सल्लम ने उलमाए दीन को बारिश नबूवत का तालाब फरमाया। मिश्कात किताबुल इल्म में है, रहमत देने वाला, रहमत तकसीम फरमाने वाले हबीब खुदा अल्लाह मौती व अना कासिम, और उसी तकसीम का ज़रिया उलमा और औलिया अल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस पाक में 40 अब्दाल के मुतालिक इरशाद हुआ कि उनकी बरकत से बारिश बरसेगी और दुश्मनों पर फतेह हासिल होगी, और उन्हीं की तुफैल अहले शाम से अजाब दूर रहेगा। उलमा के ताल्लुक से इरशाद हुआ, उलमा की ज़िंदगी की मछलियाँ दुआएँ करती हैं, मिश्कात किताबुल इल्म। इसी की शरह मिरकात में है, वो जानते हैं कि बारिश और दरिया की रवानी उलमा के तुफैल है। रब तबारक ताला तक रसाई हुजूर सल्लम के ज़रिए, और हुजूर सल्लम तक रसाई औलिया के ज़रिए, औलिया तक रसाई उलमाए हक के ज़रिए। सहाबा कराम ने सीने मुस्तफ़वी से नूर

0: इंशाअल्लाह उस घटे हुए साफ कल्ब में जलवागर होंगे और उसी का कब्र में इम्तिहान है। बेदेखे महबूब की पहचान कराई जाती है, अगर दिल साफ है तो पहचान हो जाएगी। रूह ना हो मुस्तरब मौत के इंतज़ार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मज़ार में। ईमान आलिम दीन से मिलता है, ईमान की हिफाजत औलिया इकराम से होती है। इसीलिए औलिया उलमा के शागिद उलमा औलिया से बैयत होते हैं। ये दोनों जमातें गोया आमाल व ईमान के दो बाजू हैं। जैसे परिंदा दोनों बाजू के बग़ैर उड़ नहीं सकता, ऐसे ही हमारे आमाल इन दोनों जमातों के बग़ैर बारगाह रब्बुल आलमीन तक नहीं पहुँच सकते। ये दोनों जमातों ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी में सैयदना गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर का यह मुक़दस महीना ग्यारहवीं शरीफ जैसे चाँद दिखाई दिया, रबीउल आखिर का चाँद नज़र आया, उर्फ़ आम में ग्यारहवीं शरीफ कहते हैं। लोग सैयदना गौसुल आज़म की उल्फत व मोहब्बत के हवाले कि किस तरह आपने दीन की खिदमत अंजाम दी। आलिम दीन बरहक भी हैं, वली ये कामिल भी हैं, मादरजाद वली भी हैं। तो ऐज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक ताला माह रबीउल नूर की हुजूर की अजमतें बरकतें अता फरमाकर माह रबीउल आखिर की अजमतें बरकतें औलियाए कामलीन से उल्फत व मोहब्बत उनके दीवे तरीक़े पर हमें नमाज, क़ुरान हकीम की तिलावत, वालदैन की तज़ीम और बुराइयों से बचना चाहिए। आज का यह दौर बड़ा सख्त होता जा रहा है, बुराइयाँ दिन ब दिन हमारे नौजवान बच्चों में फैल रही हैं। बस एक ही बात मैं कहूँगा, मुल्क मोर्चे से पूरी दुनिया से बुराई, चाहे वो शराब के ज़रिए हो, ड्रग के ज़रिए हो या किसी ज़रिए से है, उसके ख़ात्मे के लिए बड़ी प्यारी चीज़ है बच्चों के दिलों में, बड़ों के दिलों में मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल पैदा कर दो और फिर उन्हें मोहब्बत औलिया कामलीन में नमाज के पाबंद बना दो, क़ुरान की तिलावत का पाबंद बना दो। मेरा दावा है इंशाअल्लाह मोहब्बत खुदा और रसूल, मोहब्बत औलिया कामलीन और नमाज तिलावत क़ुरान की अजमतें बरकतें इंशाअल्लाह हम सबको बुराइयों से दूर रखेंगी और हम सब नेक और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला माह रबीउल आखिर की अजमतें बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
1: समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। आप रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारक हमें अल्लाह ताला से मज़बूत ताल्लुक़, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत, तक्वा, सब्र, आजिज़ी और ख़िदमत-ए-ख़ल्क़ का दर्स देती है।

मौजूद सामीन माहे रबीउस्सानी हमें औलिया कराम की उन अज़ीम हस्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत इस्लाह मुआशरा और अल्लाह ताला की मोहब्बत का पैगाम आम करने में गुजारी। उन्हीं अज़ीम हस्तियों में हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें हम मोहब्बत व अक़ीदत से गौसे आज़म गौसे पाक के नाम से याद करते हैं एक बुलंद मुकाम रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को तक्वा इखलास सब्र तवक्कल और अल्लाह ताला की अतात का दर्ज दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का बुनियादी पैगाम यही था कि इंसान अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से आबाद करे अपने किरदार को संवारे और मखलूक के खुदा के साथ भलाई और हुस्न अखलाक से पेश आए।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे 2:02 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपकी पसंद कार्यक्रम 4:08 पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो है 5251700। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत जो है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये प्यारा सा गीत आप समस्त श्रोताओं के लिए।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे 4028085 पे आप हमारा बहुत ही प्यार के साथ दे रहे हैं। अगला गीत कांगोप की सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, साथ में है सुरेखा जी, देपिने की रहने वाली माँ गायत्री जी हैं, नोवेल फ्रांस के रहने वाले उनके बेटे हैं अजय। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है फिल्म राम बलराम से लिया गया, गीतों का यह खूबसूरत सफर इसे हम जारी रख रहे हैं। तो श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम में समय हम प्रसारित कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। वैसे आज आपकी पसंद जो है 2 बजे से ही शुरू हो चुकी है। तो चलिए हमारे साथ बहुत ही प्यार के साथ विद्या जी हैं न्यूनन पार्क की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम में हम शामिल करें एक प्यारा सा गीत उनके नाम। ये प्यारा सा गीत जो है उनकी बहन है सती, आदित्य सती है उनकी बहन, उनकी चाची है कुमारी। तो इनके सभी परिवारों के लिए जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है हम शामिल कर रहे हैं उनके नाम। तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे और आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक।

चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और हमारे साथ इस समय जो है विश्वानी दुमन जी जुड़ी हुई है और आप वाकवा की रहने

है। तो चलिए उनके नाम जो है, ये अगला गीत उनके सभी बहनों के लिए, इंदिरा है, शारदा है, उनकी सहेलियां है, नीला है, प्रतिभा है, साथ में है शोभा और गीता गजाधर। तो बहुत ही खूबसूरत संदेशाना जो है उनके नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और इस समय जो है सुरेखा जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ में है अनिता जी पोंफिया की रहने वाली और साथ में है कथोबोन की रहने वाली आप है, केश जी आपकी दो बेटियां नेहा नितिशा है और साथ में आपके दामाद है एल्विन और आपके पति है आनंद जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत फिल्म कालिया से लिया गया।

0: चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय सुदेवी जी हैं, वाकवा की रहने वाली, और ये अगला गीत जाने वाला है त्रियोले की दीदी ललिता के लिए। कुशल परिवार है, साथ में है दीदी सुनीता, शोभा, देविना, बिंदु, माला, मलंगा के रहने वाले अनुषा है, साथ में है किरण, राम रतन परिवार है, गागुबा परिवार है, क्वाओ परिवार है, जालू परिवार है, साथ में है समस्त श्रोताओं के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। तो चलिए गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त श्रोताओं के नाम जो है इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
0: तो चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रतिज्ञान, जितने भी भक्तगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी तरफ से ढेर सारी शुभ

तो चलिए श्रोताओं अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गीत हमारे साथ मोरबे की अनिता है, करुणा, अमृता, कविता, उनके सभी दोस्तों के लिए ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। तो चलिए प्यारा सा नज़ाना हम इस कार्यक्रम में शामिल करें, आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 पे।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अदिति से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में हुई बारिश के बावजूद जलाशयों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इसके लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी के दूसरे स्रोतों के विकल्प मजबूत कर रही है। मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स के इस्तेमाल से नदियों पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है, साथ ही भूमिगत जलाशयों से पानी निकालने का काम भी तेज किया जा रहा है। मकसद है पानी के भंडार सुरक्षित रखना और दिसंबर महीने तक देश में पानी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना। CWA के अनुसार अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो पाबंदियां और सख्त की जाएंगी। और आस्था भक्ति तथा उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बाप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच विसर्जन विधि संपन्न की जा रही है। यही संदेश देता है कि बाप्पा का स्वरूप भले ही जल में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य भक्ति और शक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती है। इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुलिस को नाबालिगों के लापता होने के 193 मामलों की सूचना मिली। इनमें से ज्यादातर मामले घर से भागने के थे। नतीजन 181 बच्चे सुरक्षित मिल गए। ऐसी स्थितियों में परिवार की पहली प्रतिक्रिया गहरी चिंता और बच्चे के जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा होती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की तरफ से माता पिता को सलाह दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार पर करीबी से नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ईरानी सुरक्षा चीफ ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इनकार किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी शांति वार्ता के लिए तत्पर नहीं दिख रहे। इस अनिश्चितता के बीच आज फिर से हॉर्मुज जलमार्ग में एक जहाज पर हमला हुआ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शुभ समाचार। रॉयल रोड वॉश एआई में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अजयदेव सिंह गोपाला, जो अजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और बॉशेरी चाय के कारखाने में पूर्व सदार का काम करते थे। इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉशेरी की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती

0: Adunkli, Shrimati Amrauti Adunkli, पैदाशी नाम गजाधर जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थ कल सुबह 10:30 बजे लाशा पैलाउदौं एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: तो चलिए श्रोताओं, आइए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए तमारा के रहने वाले निवासों को, जिनमें है मौसलमा कॉलस के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 17 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. साथ में है बेलिया के रहने वाले निवासों को, जिनमें है पेचिशु में क्लेंसी रोड और रोयल सेबे के आसपास. जी हाँ, पेचिशु में क्लेंसी रोड रोयल एमसीबी के आसपास के रहने वाले निवासों को. साथ में है शुमे गाज और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 17 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी. तो श्रोता हुआ, अभी आप सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से एक चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे. ये रेडियो मॉरिशस है. तो चलिए, आपकी पसंद के कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे इस समय से लेकर शाम के 4 बजे के बीच. तो चलिए, जहाँ इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक ये कार्यक्रम जो है हम जारी रख रहे हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 4028085. हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700005. तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम अगले गाने की ओर बढ़ने वाले हैं. और ये अगला गीत हमारे साथ सुनीता जी हैं. सुनीता जी हैं लाल मच की रहने वाली और ये अगला गीत जो है उनकी पसंद पे हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में. बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म अनपढ़ से लिया गया. ये प्यारा सा सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन पाएंगे.

चलिए आपकी पसंद के रकम को हम आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं अगले गाने की ओर। जी हाँ, अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पे जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और त्रिवेणी जी है गुडलैंड्स की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जो है जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत जाने वाला है उनके पति अनिल जी के लिए। साथ में है मोहन परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीता जी है मोफिया की रहने वाली, उनके पति है रोहित जी, आदित्य, अरव, जानवी, तनिष और उनकी बहन है मीला जो कि न्यू ग्रोव की रहने वाली। तो ये अगला गीत जो है हम इन सभी श्रोताओं की के नाम हम कर रहे हैं।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। फिल्म का नाम है पत्थर की सनम। फिल्म से लिया गया गीत जाएगा इब्राहिम जी के नाम, जो कि पोर्टविस के रहने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये अगला गीत जाने वाला है। देवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो ये अगला गीत जो है उनकी पसंद पे हम चलाने वाले हैं। तो चलिए, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे। अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सा गीत है, 1911 फिल्म से लिया गया गीत इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं उनकी पसंद पे।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो की घड़ी में 3:30 बज रहे हैं। श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो है 5251700005। तो चलिए अगली भेंट में जैबून जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पोंगफाला की रहने वाली हैं आप। आपका ये मन पसंद गीत फिल्म अपना देश से लिया गया, ये गीत जाएगा आपके शोहर के लिए। आपके चार बेटों के नाम, चार बहुएँ हैं, नाती पोते हैं, साथ में है जहरीला असगर, नगमा हिदायक, उरुसा, निहाद, फैजुला। और आपके सभी भाइयों बहनों के लिए ये अगला गीत हम चला रहे हैं।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

तो चलिए श्रोताओं, अगली भेंट की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है गुमराह। महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत जाने वाला है। जयेश गुलाम जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गीत जाएगा रीता बकोरी जी के नाम, जो कि वालिद कैद की रहने वाली है। साथ में है उनके बेटे तरुण।

तो चलिए श्रोताओ, एक से बढ़ करे गीत आपके लिए आपकी पसंद कार्यक्रम में। चलिए आज जो है आम छुट्टी का दिन है, बहुत सारे लोग जो है घर पे है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी सुनने वालों को, और यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो चलिए ये अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय सेंचुरी विराज के रहने वाली माँ सुमंती जी हैं, साथ में हैं बहनें आरती, सचित्या, बबीता, रेखा, भाभी है उषा, भाई सत्यन है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चला रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है भगवान गणेश जी पर आधारित इस कार्यक्रम में। साथ में है माला सुमारू जी है कथोबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये गीत जाएगा उनके सभी बच्चों के लिए, उनके पति है सूर्यदेव जी, साथ में है उनके सभी बच्चों के नाम जो कुछ मॉरिशस में है कुछ कनाडा में है। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम ये अगला गीत राधा जी है।

0: कुछ वैसे सैंपिया की रहने वाली, तो उनके नाम भी ये अगला गीत हम चला रही है।
1: इंगे दिंगे दिंगे दिंगे दिंगे दिंगे दिंगे दिंगे दिंगे।

जान से हमें याद कर रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत उनके नाम, उनके सभी परिवारों के लिए। मनचाही गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद है। 3:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए अगला गीत एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत है, और ये गीत जो है फिल्म फना से लिया गया, और ये गीत जो है हम चलाने वाले हमारे साथ सरिता जी हैं, डीपीने की रहने वाली। ये गीत उनके नाम हम करेंगे साथ में है। ये गीत सुनीता जी के लिए, जो हमारे साथ उनके समस्त परिवारों के नाम हम चलाने वाले हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

0: तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। ये अंतिम भेंट है सभी सुनने वालों के नाम, जिन लोगों को लाइन नहीं मिली और जो लोग जो है इस समय हमसे जो है संपर्क नहीं रख पाए। कहते हैं ना, जो भूल कर भी हम नहीं भूल सकते हैं वो है यादें। कुछ अनमोल यादें जो है हम संजोए रखते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है सभी सुनने वालों के नाम इस समय हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप तमिल भाषा में कार्यक्रम जो है सुन पाएंगे। तो चलिए श्रोताओ, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए और आपके व्हाट्सएप,
1: जी हाँ,
0: आपके फ़ोन कॉल के और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये अंतिम नज़ाना जो है,
1: जी हाँ,
0: ये अंतिम नज़ाना आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से आप सभी को नमस्ते।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस
3: भूले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर।

नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। यादों की उन्हीं पुरानी गलियों में आज फिर चलते हैं जहां हर धुन अपने साथ एक हसीन याद लेकर आती है। तो आइए दिल को थोड़ा सा गुजरा हुआ जमाना की तरफ लेकर चलते हैं और सुनते हैं कुछ भूले बिसरे गीत।

धरती सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। आज धरती प्रकृति से नुकसान का बोझ उठा रही है। चलिए एक संकल्प ले कि इसे साफ, हरा भरा और सुंदर रखें। इसी एहसास के साथ अब सुनते हैं अगला गीत, जो हमें अपनी धरती और प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है।

पहला प्यार एक ऐसा एहसास है जो दिल में हमेशा अपनी एक खास जगह बना लेता है। पहली बार किसी को चाहना, उसकी यादों में मुस्कुराना और दिल का बिना कहे बहुत कुछ कह देना। जी हाँ, ये एहसास सही कुछ अलग होता है। इसी खूबसूरत एहसास को चलिए सुनते हैं अगला गाना, पहला पहला प्यार।

ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे बाप दौलत लूटा।

नया दौर जहाँ फिल्म का नाम है 1957 की एक यादगार फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार साहब और विजयंती माला जी की खूबसूरत जोड़ी थी। फिल्म मेहनत, एकता और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसे फिल्म का मशहूर गीत है मांग के साथ तुम्हारा, जहाँ चलिए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

0: बजाई, अरे कश बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिसराई, तरे रे तरे रे तरे रे रे रे,
1: भूल गया यार,
0: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। दुनिया के बोझ को

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

गाड़िया दुनिया की गाड़िया चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है।

0: दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अब

गीता दत्त जी की आवाज़ में एक अलग ही मिठास और जज्बा था। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से पुराने हिंदी गीतों को एक खास पहचान बना दी। उनके गीत आज भी दिल को छू जाते हैं और उनकी याद ताज़ा कर देते हैं। चलिए उन्हें सुरीली आवाज़ से सुनते हैं ये यादगार गीत।

हेलो, मैं हूं। उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।

तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है गीतों और बातों के साथ आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा। यूं ही जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रोग्राम के साथ। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: सुनाइए ना एक बार और।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
2: शाम की ठीक 6 बज रहे हैं।

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। आस्था, भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु

0: गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच हो रहा है आज विसर्जन। आज गणेश विसर्जन के दिन मॉरिशस के अलग अलग समंदर तटों पर नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमों की तैनाती रही। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से धार्मिक विधियां पूरी करने में मार्गदर्शन दिया। जलाशयों के गिरते जलस्तर के बीच CWA ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तेज कर दी। नदियों के पानी को साफ करने के लिए मोबाइल यूनिट्स और बोरहोल्स का अधिक उपयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, भारत में गणेश चतुर्थी पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लालबाग राजा सहित देश भर की पूजा पंडालों और घरों में बड़ी संख्या में लोग विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। नमस्कार। आस्था भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच हो रहा है विसर्जन। यही संदेश देता है कि बप्पा का स्वरूप भले ही जल में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती है। आज बप्पा का साकार स्वरूप जल में विलीन हो रहा है, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि उनका आशीर्वाद सदा जीवन में बना रहेगा। कल मंत्रोच्चारण के साथ जिन गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की गई, आज उन्हें विधि विधान से विदाई दी जा रही है। मॉरिशस के कई इलाकों में सुबह से धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। अंतिम आरती के बाद श्रद्धालु बप्पा की प्रतिमाओं के साथ विसर्जन स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। सेंट फेलिक्स के मराठी विश्वनाथ मंदिर में सुबह श्रद्धालु गणेश पूजा के लिए एकत्र हुए। मंदिर में धार्मिक विधियां पूरी करने के बाद भक्त गणपति जी की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में समंदर तट तक रवाना हुए और वहां विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा है और बप्पा को अगले वर्ष फिर पधारने के आग्रह के साथ विदाई उन्हें दी जा रही है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की ओर से कल गणेशोत्सव का राष्ट्रीय आयोजन बॉशेरी स्थित ग्रांबोआ मराठी मंडली के श्री गणेश मंदिर में किया गया। आज पूजा अर्चना और आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति और उल्लास के साथ विसर्जन यात्रा में भाग लिया। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन आवालोन में गुली नदी में किया जा रहा है और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना के साथ भक्तों ने बप्पा को भावभीनी विदाई दी है। गणपति बप्पा की भक्ति में आज जबलमऊ में भी पूरी तरह सराबोर रहा। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन ने वहां गणेश चतुर्थी का राष्ट्रीय आयोजन किया, जिसमें द्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा अर्चना मंत्रों और भजनों के बीच प्रथम पूज्य भगवान गणेश का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता के चरणों में देश की सुख शांति, परिवारों की समृद्धि और सभी के मंगल की प्रार्थना की। कुनल गोजी, गीता सराना।
1: गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने आज बेलमऊ समुद्र में भावुक मन से बप्पा को विदाई दी। गणेश विसर्जन के अवसर पर भक्त ढोल नगारों और भक्ति गीतों के साथ गणपति की मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक लाए। श्रद्धालु भगवान गणेश से सुख शांति समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। विसर्जन से पहले भक्तों की आंखों में खुशी के साथ साथ बप्पा से बिछड़ने का भाव भी नजर आता है। बप्पा की विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने विधि पूर्वक भगवान गणेश की प्रतिमाएं समुद्र में प्रवाहित किया। विधि विधान के साथ संकल्प किए गए दिन पूरे होने पर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त बप्पा की प्रतिमा को घर लेकर आते हैं, उतने ही प्रेम और भाव विभोर होकर उन्हें विदा भी कर देते हैं। देश के पूर्वी इलाके के सभा संगठनों के सदस्यों और घर परिवार में जिन लोगों ने गणेश जी को अपने यहाँ स्थापित किया था, वे आज बेलमऊ समुद्र तट पर एक

0: एकत्र हुए। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर कैलाश लौट जाते हैं। गणेश विसर्जन हमें ये संदेश देता है कि जीवन में आने वाली हर चीज एक दिन विदा होती है, लेकिन आस्था और भक्ति हमेशा हमारे दिलों में बनी रहती हैं। भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रतिमाओं को विसर्जित किया और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया का जयकारा लगाया।
1: आज गणेश विसर्जन के दिन मॉरिशस के अलग अलग समंदर तटों पर नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमों की तैनाती रही। मोशवाजी में भी अफसर पूरे समय स्थिति पर नजर रखते दिखे। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से धार्मिक विधियां पूरी करने में मार्गदर्शन दिया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी समंदर में अधिक गहराई तक न जाए। गणेश चतुर्थी पर्व का अंतिम और सबसे भावुक चरण है विसर्जन। इसका अर्थ केवल प्रतिमा को जल में समर्पित करना नहीं, बल्कि बप्पा को विदा करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने मन में बनाए रखना भी है। विसर्जन से पहले उत्तर पूजा की जाती है। इस अंतिम पूजा के बाद गणपति जी की प्रतिमा को स्थापना स्थल से सम्मानपूर्वक उठाया जाता है और विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। पालमा में साधु और रामा परिवारों ने मिलकर पूरे विधि विधान से उत्तर पूजा की। इसके बाद परिवार के सदस्य गणपति जी की प्रतिमा के साथ विसर्जन जुलूस में शामिल हुए। कैनी मौगा यशना मिश्रा।
2: गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इससे पहले उत्तर पूजा की जाती है। उत्तर पूजा भगवान गणेश की विदाई से पहले की जाने वाली विधि है। जिस स्थान पर वे कल से विराजमान हैं, वहां अंतिम बार उनकी भव्य आरती की गई। ये भावनाओं से भरा पल होता है। जब घंटों उनकी आराधना करने के बाद उन्हें विदा करने का समय आता है।
3: Le sentiment qui nous gagnait, la prière qui nous fait, on me trouve tout le monde content. J'étais dans un sourire dans une figure quand j'étais allée, je dis à nous, mais c'est vrai, pas capable d'expliquer sa bénédiction, sa émotion de gagner ici-là, qui ça a vraiment fait nous chaud au cœur.
4: Nous bien contents sa fête là, un an, une fois elle est venue, nous tous enjoy ensemble.
5: Nous santé, nous emmène Barpa. Que nous, même quand nous allons à la rivière, on ne va pas bien avec respect.
2: इसके पश्चात उनकी मूर्ति को प्रांगण में ले जाकर वहां उनकी आरती उतारी गई। शिव पार्वती पुत्र गणेश ज्ञान के देवता हैं। वे विघ्न विनाशक कहलाए जाते हैं और प्रांगण में उनकी आरती उतार कर यही प्रार्थना की जाती है कि वहां कोई विघ्न न हो, सभी दुख दर्द मिट जाए। सिर पर उनकी गद्दी चढ़ाकर अब उन्हें विसर्जन के लिए निकाला गया। जुलूस निकालकर बप्पा की जय जयकार की गई। बप्पा की मूर्ति को जिस प्रेम और भक्ति के साथ स्थापना के लिए साधु और रामा परिवार पालमा में अपने घर उन्हें लाए थे, अब उसी भाव के साथ उनका विसर्जन करने का समय भी आ गया है।
1: हर शुभ कार्य से पहले जिनका स्मरण किया जाता है वे हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश। कहीं गणपति, कहीं गणेश, तो कहीं विघ्न हर्ता के नाम से पूजे जाने वाले घरों और पूजा स्थलों में प्रवेश द्वार पर रक्षक के उनका ये अनोखा स्वरूप केवल एक धार्मिक छवि नहीं, उनका इसका प्रत्येक अंग जीवन की एक गहरी शिक्षा और आध्यात्मिक संदेश अपने भीतर समेटे हुए हैं। मंदिर, कोविल और मंदिरों में अलग अलग रूपों में विराजमान भगवान गणेश के इन्हीं प्रतीकों की पूजा की जाती है। विस्तार गीता स्वर्ण के साथ।
0: अक्सर घरों और मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाने वाले गणेश जी मेहमानों और भक्तों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में हाथी के सिर वाले देवता गणेश जी का सबसे पहले स्मरण किया जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर बाधा को दूर कर देता है। वे हमारे जीवन के हर नए अध्याय पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पूजा स्थलों पर हर समारोह की शुरुआत में गणेश जी का नाम लिया जाता है ताकि सभी पूजा विधि अच्छे से संपन्न हो। हिंदुओं के बीच गौरी पुत्र के नाम से प्रसिद्ध भगवान गणेश मंदिरों में शिव परिवार का हिस्सा हैं। वे भगवान शिव, माता पार्वती और मुर्गा के साथ विराजमान होते हैं।
6: गणेश से
0: भगवान गणेश पार्वती माता के पुत्र हैं। माता ने उनका आह्वान किया, अर्थात वे पहले से थे। वास्तव में आदि गणेश को हम पूजते हैं, हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसे जीवित करते हैं और फिर पूजते हैं। माता पार्वती ने यही किया था।
6: Et puis ça nous met prendre protestant là-dedans, nous fait vivre vivant. Après ça nous qu'à prier. C'est Mata Parvati qui fait ça même.
0: Kovilon mein Ganesh ji ki puja

0: मिन और मुर्गा के साथ की जाती हैं। कुछ पूजा स्थल विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित हैं। गणेश कोविल में गणेश जी भक्ति का केंद्र हैं। यहाँ होने वाले हर समारोह की अध्यक्षता गणेश जी ही करते हैं। इस कोविल में मुख्य रूप से भगवान गणेश ही हैं। यहीं पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। मॉरिशस में ये एकमात्र स्थल है जहाँ गणेश भगवान के लिए कोडी लगाते हैं, 10 दिनों के दौरान व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इसके बाद ध्वज नीचे लाते हैं। मंदिरम में गणेश जी मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान हैं। उनकी पूजा इस रूप में भी की जाती है कि वे भक्तों के लिए रास्ता खोलते हैं और उनकी आस्था और आध्यात्मिक खोज में साथ देते हैं। गणेश भगवान आदिपति हैं। जब शिव जी की पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में उन्हें विश्व सेना के रूप में पूजते हैं। वे बुद्धि और ज्ञान के देवता भी हैं। अलग अलग मंदिर, परंपराएं और संस्कृतियां, लेकिन विघ्नहर्ता के प्रति भक्ति एक ही है। वे गणेश जी जो हर बाधा को दूर करते हैं।
1: और आरती की लौ, मोदक की मिठास और बप्पा के दर्शनों के लिए उमड़ा जनसैलाब। भारत में गणेशोत्सव ने आस्था, परंपरा और संस्कृति को एक सूत्र में बांध दिया है। लालबागचा राजा के भव्य दरबार से लेकर घरों की शांत पूजा तक हर भक्त की एक ही प्रार्थना है, विघ्न दूर हों और जीवन में मंगल बना रहे। आस्था गोविंद।
2: भक्तों की लंबी कतारें, आंखों में अटूट श्रद्धा और होठों पर एक ही जय घोष, गणपति बप्पा मोरिया। लालबाग चराजा के दरबार से उठी भक्ति की ये लहर पूरे भारत को गणेशमय कर रही है। कहीं शंख और घंटियों की पवित्र ध्वनि, कहीं मंत्रों का जाप, तो कहीं आरती की लौ में नतमस्तक श्रद्धालु। घरों और पंडालों में विराजे गणपति के सामने भक्त सुख संपत्ति, शांति और मंगल की कामना कर रहे हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अपने भीतर जीवन का गहरा संदेश समेटे हुए हैं। उनका विशाल मस्तक बड़ी और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। बड़े कान सबकी बात ध्यान से सुनने का संदेश देते हैं। छोटी आंखें लक्ष्य पर एकाग्र रहने की सीख देती हैं। उनकी सूंड शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रतीक है। गणपति का प्रिय मोदक ज्ञान से मिलने वाले आंतरिक आनंद का प्रतीक माना जाता है। वहीं उनके चरणों में बैठा छोटा सा मूषक मन की इच्छाओं और अहंकार को वश में रखने की प्रेरणा देता है। मंगलकर्ता, बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता गणेश की पूजा के साथ भक्त जीवन की हर नई शुरुआत करती है। यही विश्वास है कि जहाँ गणपति का आशीर्वाद हो, वहाँ कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। भक्ति और उत्साह के इन दिनों के बाद होगा विसर्जन। मिट्टी से बना गणपति का स्वरूप फिर प्रकृति में समा जाएगा, ये संदेश देते हुए कि रूप भले ही आंखों से ओझल हो जाए, ईश्वर की शक्ति और उनका आशीर्वाद सदा हमारे भीतर बना रहता है।
1: और स्थानीय स्तर पर लौटते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। मॉरिशस में पर्यावरण पर बढ़ता दबाव अब चिंता का विषय बन रहा है। देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधन कितने समय तक हमारी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, इस पर यूनाइटेड नेशंस कंट्री टीम ने अपनी नए पॉलिसी ब्रीफ में सवाल उठाए हैं। बजट 2026-2027 के विश्लेषण पर आधारित इस रिपोर्ट में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। चेतावनी दी गई है कि 2030 तक मॉरिशस को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और जलाशयों में पानी लगातार कम हो रहा है, ऐसे में CWA अब नदियों और भूमिगत जलाशयों से पानी ज़्यादा पानी ले रहा है। नदियों के पानी को साफ करने के लिए मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। कोशिश ये ही है कि जलाशयों में बचा पानी सुरक्षित रहे और दिसंबर तक लोगों को पानी मिलता रहे, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो पानी की कटौतियाँ और बढ़ाई जा सकती हैं। इस साल जनवरी से सितंबर महीने तक 193 नाबालिगों के लापता होने की शिकायतें पुलिस को मिली। इनमें अधिकतर मामले बच्चे के घर छोड़कर चले जाने से जुड़े रहे। राहत

तक की बात यह है कि 181 बच्चों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। ऐसे मामलों से बचने के लिए फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड माता पिता को बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने और उनकी संगत के बारे में जानकारियां रखने की सलाह दे रही है।

आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो गुरुवार 17 सितंबर तक सुबह 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात सेंट्रल प्लाटो और कुछ हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। कल दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर बारिश जारी रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। और ऊंचाई वाली जगहों से बचने तथा क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर कुछ इलाकों पर, कुछ तटीय इलाकों पर पड़ेगा और कुछ लगूनों पर भी पड़ेगा। इसलिए मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों तथा आम जनता से इन तटीय इलाकों और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, खासकर हाई टाइड के दौरान। तापमान 3 डिग्रीज से कम रहेगा। सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। शाही इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:05 पर सूर्योदय, शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में युद्ध विक हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।

Çok smaçal suniye. Princess Anne Street, 7000 triolemi. Princess Anne Street, 7000 triolemi. 77 sal ki 77 years old. Ki Mrs. Bibi esan Shadubakas. Mrs. Bibi esan Shadubakas. Pedashi nam batan. Jo Bibi nam se zyada jani jati thi. Intakal kar gayi hain. Ka janaza aaj raat 8 baje. Inka janaza aaj raat 8 baje. Inki beti. Mrs. Tanojia, Emma Bakas ki makan, Princess Anne Street, 7000 triole se utha kar dafnane ke liye kab malore ka kabristan le jaya jayega, funeral tonight at 8:15 p.m. Plateau Road Goodlands me, 79 saal ki 79 years old, Shrimati Rulmati Badai, Shrimati Rulmati Badai, pedashi naam Algu, जो बड़ की मामा बादाय नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और हमारी सहयोगी निर्मला की माँ थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे, इनके बेटे श्री विदेश बादाय के मकान प्लाटो रोड गुलेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुलेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो आफ्टरनून। ऑचोयम गली बुवालों में 76 साल की 76 years old श्रीमती देवीवंती बालोराम, श्रीमती देवीवंती बालोराम जो सोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है।

की अर्थी कल दिन के 10 बजे की अर्थी कल दिन के 10 बजे की मकान औचोकियम गली बो वालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो में वर्गी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्पेरेंस पितोमे, डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्पेरेंस पितोमे 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेमदत्त चरण, श्री प्रेमदत्त चरण जो प्रभु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। कि अर्थी कल सुबह 9 बजे की अर्थी कल सुबह 9 बजे के बेटे श्री कवि चरण के मकान डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्पेरेंस पितोमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोगुलेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9 AM। महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे में, महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जसमत सीचन, श्रीमती जसमत सीचन पिताश्री नामबी से सर जो जयंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। कि अर्थी कल दिन के 11 बजे की अर्थी कल दिन के 11 बजे के मकान महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेटी रिविया में, प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेटी रिविया में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिदुती शांतो, श्रीमती बिदुती बिदाउती शांतो जो शांति बगमर नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी कल दिन के 10:30 बजे कि अर्थी कल दिन के 10:30 बजे के बेटे श्री किशन लाल बगमर के मकान प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेटी रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सेंट पियर बम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। इबिस्कस रोड लागोलत में, इबिस्कस रोड लागोलत में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बिकू इसराम, श्री बिकू इसराम जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे के बेटे श्री जोशन इसराम के मकान इबिस्कस रोड लागोलत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियन वॉक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 11 AM। क्रिमिशन रोड कांतोरल में, क्रिमिशन रोड कांतोरल में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड श्री धनपत गनोरी, श्री धनपत गनोरी जो दीपलाल नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री सत्येंद्र गनोरी के मकान क्रिमिशन रोड कांतोरल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 11 AM। शेनफील्ड रोड रिविया जो पॉमे, शेनफील्ड रोड रिविया जो पॉमे 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड श्री रामचंद्र जोय, श्री रामचंद्र जोय जो जोय चेकमान चेकमैन से एंते नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी कल दिन के 3:30 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 3:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी जोय के मकान शेनफील्ड रोड रिविया जो पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंदिलास गांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 3:30 PM।

बनतिया वाकवा में, बनतिया वाकवा में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूमिला राम, श्रीमती रूमिला राम जो बड़ोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। केयर थी कल दिन के एक बजे, इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके भतीजे श्री भुवेश, श्री भवेश राम के मकान बनतिया वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। टैगोले इन एस्पेरेंस कॉचे मिलिते अमी, टैगोले इन एस्पेरेंस कॉचे मिलिते अमी 40 साल की 40 ईयर्स ओल्ड श्रीमती वरुणा बर्ना, श्रीमती वरुणा बर्ना पैदाशी नाम रघुनंदन जो वरुणा नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके ससुर श्री सुरुज बर्ना के मकान टैगोलेन एस्पेरेंस कॉचे मिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डोमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती,

Adunkli. Shrimati Amrauti Adunkali. पैदाशी नाम का जाधर जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे इनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे लाशा पेलौदौत एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधीपाल माँ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM रॉयल रोड बॉशेरी में। रॉयल रोड बॉशेरी में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अजय देव सिंह गोपाल, श्री अजय देव सिंह गोपाल जो अजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बॉशेरी चाय कारखाने के पूर्व सरदार थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉशेरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8 नून कादिया बाबा लेन लिस्कालिए में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रानी प्रेमचंद जो प्रतिमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी माँ श्रीमती दमयंती प्रेमचंद के मकान कादिया बाबा लेन लिस्कालिए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9:30 AM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। रोजिल मोसलमा मुंबई और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 16 सितंबर 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना सूचित किए फिर से बिजली की सप्लाई को जारी की जाएगी। सीईबी इस असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: सभी श्रोताओं को अनीता का सप्रेम नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, जहां आप भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। आज कुछ लोगों ने बप्पा का विसर्जन किया है, इसी कामना के साथ कि बप्पा उनके विघ्नों तथा दुखों को हर लेंगे। तो कुछ लोग अभी और 10 दिन जो हैं बप्पा की सेवा पूजा अर्चना में लगाएंगे। भक्तों, भगवान गणेश के नाम उनके गहरे आध्यात्मिकता, दार्शनिकता व जीवन के गुणों के प्रतीक हैं। जी हां श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम गजानंद भगवान के विभिन्न नामों की चर्चा करेंगे। आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ गणेश भजन से।

भक्तों, भगवान गणेश जी का एक नाम है वक्रतुंड, और यह नाम पड़ा क्योंकि उनकी सूंड टेढ़ी है। यह नाम दर्शाता है कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति दोनों वक्र अर्थात रहस्यमयी और गतिशील है, और भगवान इस पूरी सृष्टि के नियंत्रक हैं।

प्रियजन, भगवान गणेश जी का नाम एक दंत भी है। यहाँ इसलिए क्योंकि उनका एक दांत ही है, एक दांत टूटा हुआ है, और यह एकाग्रता, बुद्धि, दृढ़ संकल्प और सारे द्वंद्वों से ऊपर उठने का प्रतीक है। साथ ही साथ गजानन को लंबोदर भी कहते हैं, और यहाँ इसलिए क्योंकि उनका बड़ा पेट है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान सभी अच्छे और बुरे अनुभवों, सुख दुख को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं।

भक्तजन भगवान गणेश को विनायक भी कहते हैं, अर्थात जो सबके नेता या मार्गदर्शक हैं, यह जीवन में सही राह दिखाने और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। साथ ही साथ उनका एक प्रमुख नाम गजानन है, क्योंकि उनके हाथी के मुख है और हाथी की जो बुद्धि होती है विशालता और उसकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तेज

श्रोताओं, गणेश जी को बाल चंद्र भी कहते हैं, यह इसलिए क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा है और यह शीतलता, शांति और चेतना के विस्तार का प्रतीक है। जी श्रोताओं, आज आपने गणेश जी के प्रमुख नामों के बारे में जाना है और इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

सामईन ज़ी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह, ये महीना है ज़िक्र विलायत का, ये महीना है मोहब्बत व अकीदत का, ये महीना है उनकी यादों से अपने ईमान को ताज़ा करने का जिनकी ज़िंदगी हमें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलाती हैं, जिनकी तालीमात हमें नफ्स की ग़ुलामी से निकाल कर रब्बे क़दीर की बंदगी में ले आती हैं। जी हाँ, मेरा इशारा हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से है, वो वली कामिल जिनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ व जल की खिदमत में गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते करामत से बेशुमार गैर मुसलमान मुशर्रफ़ बइस्लाम हुए।

की इस मनकबत के साथ आज का ये मुबारक प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्ताम को पहुंचता है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये वक्त दिया कि हम दीन की बातें आम करें, बिलखसूस हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और तालीमात से फैज़ हासिल करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, आपका मेज़बान निसार अख्तर अब आपसे इजाज़त तलब करता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले मंगल को होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।

0: संगत्यारोग घड़ी मिलाल इभगत रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुनत रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
5: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
6: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
0: गमत शुरू करवा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रेडियो मॉरिशस AM मोड पर आठ निष्कर्ष और रेडियो मनोरंजन 94.6 और 98.2 FM पर सब संगत यालो के नमस्ते और आदाब स्वागत करते जाते लोग के हमने के शो में मस्त शो है का नाम है भोजपुरी तड़का अभी से लेके रात के 11 बजे रे तो लोग नचावब स और साथ में गावब स झुमब स कमरवा डुलावब स मन करता कौन अभी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा दबैया का जगह दे हुए जगह विद सैक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर SMS कर दिया हाँ ये प्रोग्राम चलता रेडियो और टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मन मॉरिशस पर तो रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज ऑन करे और सब अपन मिसाज विदा करे और भी ढेर कोई उनके साथ देवता सब कुछ के स्वागत बा और संगतियारो आज है मंगल 15 सितंबर 2026 आज हम मनावत गणेश चतुर्थी के त्योहार गणेश चतुर्थी गणेश भगवान के जन्मोत्सव है गणेश जी बुद्धि ज्ञान और समृद्धि के देवता हवन जा कोनो भी कार्य करे से पहले हमने गणेश भगवान की पूजा करी रह सबका नाम नहीं रह सर ये त्योहार में

घर घर में गणेश जी की मूर्ति के स्थापन होला और फूल दुर्वा फल दीप लड्डू और मोदक से हमने भगवान के स्वागत कर लिया सर। गणेश जी जोन है वो जोन है गणेश जी जो बुद्धि और ज्ञान के देवता है और गणेश जी के मंत्र जाप और आरती होला एक सप्ताह से गणेश जी के भजन कीर्तन करी रहा सर। फिर शाम की झाकरी भी होला और अंत में आज गणेश के विसर्जन होला। गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हवन जा होकर दुगो पत्नी हवन जा एक हरिधि और सिद्धि और गणेश के ढेर मना नाम बा जैसे लंबोदरा विघ्नेश्वरा एकदंता शिव नंदन पार्वती नंदन सिद्धि विनायक महागणपति बाल गणपति आदि आदि। तो ये त्यौहार जो है भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के मनावी रहा सत एमबीसी की पूरी टीम की ओर से जितना कोई आज है ये गणेश चतुर्थी मनाई रन जा और विसर्जन कर लन जा सबको के हार्दिक शुभकामना। गणपति बापा मोरिया गणपति बापा मोरिया। तो जितना गणेश के भक्त हमने के अभी रात के देखा था टिकटॉक पर और रेडियो पर सुना था तो है गणेश वंदना तुलो के नाम।

संगतिया लोग, एगो इंसान अपन चरित्र और अपन स्वभाव से पहचाना जाए, ना कि अपन नाम से। नाम में क्या रखा है, इंसान अपन अच्छा कर्म से पहचानल जाला। अगर तू एगो अच्छा इंसान हवा तो सब कोई तोरा पसंद करी, पर अगर तू को बुरा इंसान हवा तू सबके डरावेला, तो कोई भी तोरा इंसान तो कोई भी तोरा रिस्पेक्ट नहीं करी, तोर मान आदर नहीं करी। अच्छा रह, अच्छा बुरी बोलब तो सब कोई तोहर से सच्ची तोहर से प्यार करी, तोहर अपना मानी, ये बात सच है। और ऐसे में चलब सुनब जगला गाना सुबह रामचंद फकीर गेलेवन दुल्हन के दादी। और हमने की एगो संगतिया वन यूषा नाम धड़कन। हेलो यूषा नाम धड़कन, जनाब यूषा नाम धड़कन हाईलैंड हाईलैंड्स, बधाई हो बधाई। आ तू अब साइकोलॉजिस्ट बन गल, एजुकेशन साइकोलॉजी में एमए कर ले हो जा, तब बहुत बहुत बधाई तोहर अम्मी जान, तोहर बहन और सब नाम धड़कन परिवार की ओर से। यूषा नाम धड़कन के कंग्रेचुलेशंस, शाबाश। और हमियों की ओर से, एमबीसी की पूरी टीम की ओर से यूषा नाम धड़कन को बहुत बहुत बधाई। आप रहन हाईलैंड से बहुत परिश्रम करके एग्जाम्स पास हो रहन, रब तु गो पसिकोलोग हवन जाता, बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत तोहर नाम। तो गीतवा तोहर खातिर खास कर यूषा नाम धड़कन ढेमाना प्यार और बधाई, कंग्रेचुलेशंस, ब्रावो।

ऐसे ही नचते गाते रहिए हमके साथ एमबीसी रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस है। संगतिया लोग हमने भगवान के इधर उधर खोजी रह, पर असल में भगवान हमने के भीतर बा, हमने के हृदय में बा, हमने के दिल में बा, और वो बसल बा हमने के दिल के अंदर। अगर दिल साफ रही तो सब ठीक बा, दिल भी साफ नहीं रही तो कितना पाठ पूजा कर बो व्यर्थ। पूजा पाठ तब सफल हो रहा जब हमने के दिल साफ रहेगा, हो कि नहीं। तो हमने की आत्मा में भगवान बसल बा, सब कोई में भगवान बा, ये खातिर हमने सब कोई के आदर सत्कार करे सर, सब कोई के नमस्ते सलाम करी रह सर। घमंडी नहीं बनिया है गौनवा नहीं करे के, जे कोई के जे कोई से भी मिल बस सबके राम सलाम करते रहिया। और अगला गीत जो हबी को संगत पता लिवरपूल गोल डालता है वो गीत डाल दे लिवरपूल पर, आए हाय नीरज गुप्त मधु गई वन अनुशाक गीत और खातिर बिकाराम सिंह, देवीना राम बिरेच, अलाना रोज, दीपक देवी दयाल, फिर हई गीत

Ravi Maitiri Sripa, Italie Seho, Italy Sehoen, or user 4338, Gitoro Nam, Liverpool Gold, Aldela, Tachala Gitos Namja, Lugansh Govender, Lugesh, Up South Africa, Semiki Sunatawan or Dikatawan, Bod Bod Denevad, Niraj Ramdhan, Venice Italy Se, or Gito Harpatni. Okay, Dharpati Jun Idunya Meniba. Okay, I'm really sorry. Or Mr. Lama Hegitoronam Birj Bukhan Mukesh Birj Bukhan hello Hegitoronam Prakash Kumar hello Millionaire Git Mangata Karma Indrani Sabihari Parivar Koch Media Se or Hegit Chalawat is Liverpool ke Gitwa Awata Babu Thora Intajar Kara Vikash Ram Likha Hegitoronam Ke Ham Ante Ke Baat नहीं समझे कहे इतना सब कोई प्रेसे वाला ड्राइव कर बता सीमा में सब कोई प्रेसे 20 में चले के सब कोई प्रेसे आतान कर भैया बारी बारी से वो गीतवा चाली से अभी को जालुक दली सा अब चली आ रहे जितना लिवरपूल के फैंस हमने के सुना था गीत होलो के नाम विकास राम लिखा गीत होरो नाम चले एक सा लिवरपूल की कहानी सुन अब सर

बाप रे बाप, लिवरपूल की धमाल दिखला सच के लिवरपूल वा गोल डाल रखो कोई नहीं तान कर पर लिवरपूल नीमन से गोलवा डाल दिला फिर में अब का करवा रात की 9 बज के आधा हुआ था और डॉक्टर बोलेला शराब नहीं पिए के, डॉक्टर बोला सिगरेट नहीं फूके के और डॉक्टर बोला घा के चीज़ नहीं खाए के और हमने क्या कही रहा सर सब ले कौते कही रहा सर ये खातिर प्रॉब्लम होला और सब पैसा डॉक्टर डगे जरा अगर सब कोई अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे शराब नहीं पी सिगरेट नहीं फूकी बैलेंस है खाए तो कोनो बीमारी नहीं हुई भैया ढेर दिन से कब्जा जिए पर आज कल आदमी सब ले कौते है जाने न सर कि सिगरेट पीबा तब प्रॉब्लम हो कैंसर हो आई हो दिल की बीमारी हो जानी रहा सर शराब जब सर तही प्रॉब्लम हो पर फिर भी कायन इतना तेजी का ही इंसान रहेला और तेजी कारण वो अपन जान गवा देवेला हो कि नहीं तो हम ही बोले सर डॉक्टर के बात चेहरा सुने के डॉक्टर जब थोड़ा सलाह दे होता कि सिगरेट नहीं फूके के शराब नहीं पिए के तो वो जाना था काबुल होता और डॉक्टर बोला गा के चीज़ नहीं खाए कि जितना लेगीम खाइबा अच्छा है जितना फूई खाइबा अच्छा बहुत स्ट्रेस से तनाव से दूर रहिए अब घर में किचकिच है सब नहीं करे के हैं कबो कबो पति पत्नी में लड़ाई हो जा रहा और पत्नी किचकिच किचकिच करते रह रहा तो ये सबसे छा दूर रहेगी भैया हाई सब स्ट्रेस करेगा और यही से दिल की बीमारी भी सकेला हो हाँ तो देखा तो झगड़ा हुआ था पति पत्नी में तो एक जना के चाह सीधे हो जाए के या तो पति में हो जाए सीधे हो जाए या पति अब दोनों जना लड़ाई करे लगी तो महाभारत हो जाए हम लोग के महाभारत हो रहा पर कब कबो हम अपन आपूता बन कर दे ला या चल दे ला लुतु लगे लेतु करे तू बोला तो हम कुछ बोले के तू तू, तू जारी रखा अपन टेम्पो हम जाते गो लेतु करके आए और ऐसे में अगला गीत जलसा गीत आ गए रेवन गीत गजाधर अरे गीत चली खासम खास शमीरा खातिर नदानी जगरू हवन गुडलैंड मामजल जान गुडलैंड से और बबीता चमरू हेलो और है गाना चला हुआ था इस बाबुआ नहीं यूजर 43 38 158 जीते रहे बाबू आशीर्वाद दे होते हुआ ओके हाँ रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पे चला था कार्यक्रम मारी है गीत और खातिर और है गीत हमें चला हुआ था इस सब संगतियारों के नाम स्वामी के साथ जुड़ल बा रविश मंडू है गीत और भाई भौजाई माताजी पिताजी खातिर साइलेंट केयर सकमा रीता मौसी रेणुका खातिर सुदेश जसवा गीत तोहर माँ राजकुमारी राजमन्ना होरीलाल दीनू लोंग चिबुक राजस्ती माना खातिर मंता मानती सिंह प्रतिभा महाबल रेलन रिवेजिपोस गीत हो खातिर संजीव दीनू मोताबा के निवासी वन और बहुत प्यार से उनकी सुनेलन जा गीत हो खातिर आशा जानू कॉटेज से है गीत और नाम तोहर माता जी कुमारी शुभम दिद्यार्थी जियाजी चीजों पर सब जानू परिवार के नाम तो चलो एक साथ सुने है गीतवा गीता गजाधर के गावल गीत जलसा

जलसा तो होते रही रात के 11 बजे हम आए तक खूब जलसा करी ऐसा और बोली जैसा कि हमने के मन जुन है बड़ी चंचल मन है मन एगो प्रास नहीं रहे रहा आई मनवा में कितना मना बात बा कबो हई बात सोचे रहा कबो हो बात सोचे रहा सोचते सोचते कबो सब कुछ भुला जा रहा ब्लैंक हो कि नहीं तई मन के चेला कंट्रोल में आने के नियंत्रण में करे के हई मन जुन है घोड़ा लिखा भागेला अरे घोड़ा के रस्सी तुम्हारे हाथ में बात थोड़ा चला मन की कंट्रोल करके वरना है मन जो है इधर उधर के चीज़ में भटक जाए हो कि नहीं और अक्लमंद इंसान बुद्धिमान इंसान वह जो अपन मन के अपन वश में रखेगा समझदार के इशारा काफ़ी बा और ऐसे में सुनब जाए अगला गाना और है गीत रीता खातिर हेलो रीता हाय किशु और है गीत चौथीस बबीता चमको खातिर जो प्यार से उनकी सुनतवन हेलो और फिर है गीत तो हमने चलावा थी आकाश चेतन के नाम आफिर सुवन लावेनिया से पी एस इब्राहिम पोर्टविस से रोजिदा हाईलैंड से और है गीत चलावा थी सैंतोम एस एस एस कॉलेज के सब स्टूडेंट्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम और है गीत चलावा थी मिसेज बंधन मिसेज ओकल मिसेज जुमादा मिसेज रघुनंदन और सब संगत्यालों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल बा इस समय रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था तो गीत वातुलों के नाम भी मच्छी मरवा हमर नाम हम तो मच्छी मारीला हाँ अभी समुंदर में जाए कि मना बा कहे कि मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जो है तो जारी बा और समुंदर में ऊँचा ऊँचा लहर उठा था और मौसम हवादार मौसम बात बोला था मितियो बोला बा लामे में नहीं जाए के है सब मच्छी मरवा लोग जितना कहीं सुनता तब अपन घर में रहिए चाहे मच्छी मरवा लोग अभी समुंदर में नहीं जाए के कहे के ढेर बड़का बड़का बाघ उठाता एगो एंटी साइक्लोन है जेकर कारण इसे बाघ उठाता उधर समुंदर में बाघ उठाता पर यहाँ तक ठंडा कर रहता चारों ओर लेते कितने रहता हूँ अच्छा रहा अभी बिफे ले लेता हूँ ऐसे रही हवा हवा पानी पानी उतना नहीं बसता पर लेता हूँ हवा हवा जस्ती रही तब तरीको जाके तो कि दली रही खासकर लड़का लोग फजर के जब कॉलेज लेकुल जाते वन सदे कोई बोने रे निकल से 5 बजे 6 बजे तब तरीको जाके अपन एफ एम ए अपन पास अपन

सब ले लिया है ताकि निमन से पोते जो बार तब सब बल खुल जाए तो चला सुनब जा मच्छी मरवा लोग कहानी जय हरलाल गीत गए वन है कि राधा शिवाला खातिर को बेटा प्रशांत और पतु बेटी शिल्पा और सब परिवार के नाम चंपा और देविका रामगतिया है गीत तुलो के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ मच्छी मरुआ हमर नाम हम तो मच्छी मारी ला हैया रे हैया रे हैया हैया रे टिकटॉक पर एक गीत वाले को संगत मंगने रलन है गीत तोहरो नाम

अभी जय हरलाल की गीत सुनाते ल मच्छी मरुआ मर नाम। और हमने जो इन देश में रही रास देशवा में हमने के पूर्वज जो है भारत के ध्येय मना जगह से आ रहा है कूली के रूप में या मॉरिशस में काम करे वो लोग ठग के बुला ग्रह कि मॉरिशस में जब पत्थर निकल जन से पत्थर के नीचे सोना मिली ये खातिर हमने के माँ बाप दादा दादी चाचा चाची की पर दादा पर दादी पर नाना पर नानी आ रहा मॉरिशस में काम करे। और हमने के पूर्वज से बुरा कर रहा है कि मॉरिशस जो है बहुत ही प्यारा देश और माथी के नीचे सोना ही सोना बा। और हमने जनी से कौन दुख सलन से हमने के पूर्वजों यहाँ पर आके सदार लोग कैसे मारे उंगली लोग कैसे उनके फौज से मारे मार मार के काम करें तो फजी से चांदी बेचारा लोग काम करे थलन सा ग्रुप मॉरिशस में। और का करब उस जमाने में ऐसे रहा भैया आजकल के जमाने कोई कोई फौज से मरबा तो वो थोड़ा फौज से धरा देनी मन से टिट फॉर टाट। पर आगे के जमाने में हमने के पूर्वज लोग बड़ी नादान झेरी न्यूसों भोला भाला रहन सा और है जो फौसे आउंगे लोग रहे बड़ी दुमिनिया कर तलन से हमने पर नाना पर दादा से है फौज से मारा तलन से लोग के काम कराए खातिर। ऐसे में सुनम जग लगी किशोर खिमिया की आवाज़ में हाथों में हाथ है कि चलावते इस वी ऑफ फैमिली के नाम प्रिंसेस दृष्टि केविन वेल वैते गीत तोहर नाम और साथ में सब लक्ष्मण परिवार खातिर और तोहर माता जी खातिर जो भी बर्तन मांझे तो वन और केविन वेल वैते गीत तोहर नाम तोहर सब परिवार के नाम याश बंधन हेलो है गीत तोहर नाम कृष्णा जीता हम ठीक हैं भैया तू कैसे हो है गीत तोहर नाम विकास रामलेखा भी साध देव थवन जब कृष्णा जीता भरा जोर नाचा था मिलके संगे संगे तब कृष्णा जीता है गीतवा खासम खास तोहर खातिर हाथों में हाथ चला हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ जा

0: संगे संगे हाथों में हाथ डाल के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ जा और हमने पर मंजिल पाओ जा जरूर। रात के 9:56 हुआ था। दूसरा तो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो है लाइव एमबीसी मौका से मिल के प्रसारण चलता भोजपुरी तरह का कार्यक्रम। और जब कोनो काम में तो हाथ डाल दे रहे हो संगत यार हो तो काम के चला हर हाल में पूरा करके दिखवाजी नहीं हो या कब कब दिखवाजी हो जैसे कमवा कब कठिन रहेला ढेर जिपसिल रहेला पर का कर परेला कमवा करके ना तो दिखवाजी नहीं हो के जैसे हम बोलत हैं जब कमवा जो है कमवा चाह पूरा करके अधूरा काम नहीं छोड़ जा ठीक बा। और बेशक कुआस थोड़ा पैशंस के साथ कमवा पूरा करके शायद थोड़ा सुन समय लगी या ज़्यादा समय लगी पर काम के चेला जोन काम में हाथ दिले हो वो काम के चेला पूरा करके रखेगी। ऐसा में सुनम अगला गाना जल साबा अंजू की तो गई वो ना गीत चलावत ऐसा ए और के उसे सब राम बरन परिवार के नाम अमिता गणेश पीतों सेवन सुदेवी वाकवा सेवन दीदी ललिता कुशल चाचात्मा राम कृष्णी कृषय कृष्णी लक्षता और सब राम रतन परिवार के नाम है कि चली जलसाबा चला जलसा करे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के साथ।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार द भोजपुरी

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
0: भोजपुरी तड़का
2: रात के 10:03 हुआ था। तू सुन तो रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन, भोजपुरी तड़का।

प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह सितालु के साथ रात के 11 बजे ले और संगतिया लोग बोईरा सा की तकदीर में जो निखलबा वही होला। तकदीर के आगे इंसान बेबस बा, लाचार बा। ढेर कोई की तकदीर में सुखी सुख रहेला, ढेर कोई की तकदीर में दुखी दुख। पर कोई की तकदीर में पहले दुख तो बाद में सुख, पहले सुख तो बाद में दुख, ये सब चलते रहेला। तो सच्चे के जो तकदीर जो है सच्चे के है एग्जिस्ट है तकदीर के बाद। अगर तकदीर में लिखल बा तो डॉक्टर बनबा तो डॉक्टर बनबा, अध्यापक लिखल बा हमें की तकदीर में रहल अध्यापक बने के और रेडियो स्पीकर बने के, तो देखा भी रेडियो में ही सा और लिखल में भी काम कही रह सा, तो ये सब तकदीर की बात है। पर हम एक बात मानी रहा, तकदीर एगो बात है हाँ, पर चेहला मेहनत वो करे के। अब मेहनत लगन मेहनत परिश्रम नहीं कर बस सब कुछ तकदीर के हाथ में डाले बता कैसे हो। एक एग्जाम जो होते हैं उदाहरण जो होते हैं बिले क्या लोग एग्जाम करिए खादनफ के फोम सैंक एच एस सी के, अगर मेहनत और लगन से अगर रिविजन नहीं करिए तो पास हो नहीं ना। अब बोले आ यो मुनफिनी फेल डमो देश से नहीं देश से मैं फेल हो कि नहीं रहल, तू फेल हो अपन कारण से। और खास कर जो ना क्या लोग दुबले कर रहता फोम सैंक फोम फाइव एच एस सी, तो सावधान रहिए कहे कि एक कुछ करल एग्जाम है लेकोल माफ़ कर दे रख देश हम कुछ कर पास नहीं होता लेकोल बाहर डाल दी। तो माँ बाप के पैसा ज़ाया नहीं करिया लड़का लोग जितना लड़का लोग एन से कि एग्जाम से भाग दिए एस सी एच एस सी में। गुड लक ऑल द बेस्ट हमने की ओर से, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, एग्जाम में दूर नहीं पाया अभी सितंबर से एग्जाम शुरू होता। तो चला अभी अगला गीत समझ नहीं है सिरे और है गीत आप नहीं चलाओते इस देवन नदी वाला के नाम वैनकूवर कनाडा से अवन रंभा हवन स्विट्जरलैंड से अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से चंदन प्रिया मॉरिशस में सलोनी माँ इंदिरा चिंताराम सब चिंताराम परिवार के नाम और है गीत चलावत ही सही सब संगतियालों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा टिकटॉक पेज पर हमने की देखा था वन स बहुत बहुत प्यार के साथ यस ढेर मना संगतियालोक बा ललिता चरण हेलो नमस्ते है गीत तोरो नाम ललिता चरण। फिर वेजंती कुमार ईशा मिस्तमंगल सुकन अंजू एंजल नास मारियान फैंटम जान जहीना कानू हिसन नफीजा सोईफू सुनीता सिचन स्मी कैपन सारू बिंदु अकालू बबीता नजीर खान ममल आसियान चोईचू आश आशना नितिन गंगाराम ललिता चरण जी हाँ। और गीत मांगले वन सब चरण परिवार के नाम जरूर नितिन गंगाराम हेलो नितिन भाई कैसे हो। वनिसा वनिसा बी एम के साथ देवत वन फिर अक्षय यवन वा हाय गीत हो खातिर नितिन गंगाराम बहुत प्यार से उनके साथ जुड़ा रहन और प्रोग्राम के लाइव करते वन शेयर करते वन। सुभाष मोती हेलो है गीत थोड़ो नाम फिर अक्षय यनवा है गीत हो खातिर चलाते नया सीरीज चले एक साथ सुनम चाहूँ

बहुत दुख की बात है कि देखिरा सा आजकल ढेर जने लोग लाद्रोग सीमिक साइंटिफिक में अपन जिंदगी भर बात करते वन सा ये सब बुरा चीज है। एक को थोड़ा लत लग जाए इस सब के तो ये लत कब उन्हें छूटेगा। खासकर देखिरा से नौजवान लोग ये सब में पड़ रहे रहन सा तो हमने की काम समझाए कि कभी भी सब विष में नहीं पड़िया। जैसे लाद्रोग है साइंटिफिक है सीमिक ये सब नहीं चहला है, इस सबसे तुहर जिंदगी बर्बाद हो जाए। देखा तुहर माँ बाप कितना परिश्रम करके तुहरा पुसेरा बड़ा कर लन जा और अब तू बड़ा हो के संग काम कर बा अपनो जिंदगी बर्बाद कर तो अपन परिवार की भी जिंदगी बर्बाद कर तो ठीक बा तो ऐसा काम नहीं चहला करे के ठीक बा। जो प्लास में सब घ्रीमास कर सब पीते कर प्लास में घुसपो करिए सर जैसे स्विमिंग बा साइकिलिंग बा मॉर्निंग वॉक बा मेडिटेशन रेकी योगा पूजा पाठ सत्संग ये सब करिए सर। पहले लाथोक साइंटिफिक में सब में नहीं पड़े कि भैया नितिन गंगाराम बुलतवन ओ बल माँ के गाना शहर में महल बनवा दिया ओ बल महा गीता भैया खासकर नितिन गंगाराम है गीत और खातिर स्पेशली फॉर यू प्यार से गीत हम नित चला होते गीत चली देवे नदी वाला खातिर और बिपिन बी है गीत सासी बनुमारी खातिर रयान है गीत तोहर नाम फिर गुसंगतिया मोताबा के सब निवासी खातिर गीत मंगलबा सुनीता राजन और नीतीश है गीत तरह के नाम भी बोस बिग बॉस मुताम्बी है गीत तोहरों नाम और जैना बेला स्वीट एंड लवली जैना बेला हमने के साथ वन आफेज वन लवेने ऐसा प्यार से रोजीदा हाईलैंड से स्वीट रोजीदा वो बहुत प्यार से प्रोग्राम सुना था और हमने के दिखा था वन टिकटॉक पर बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम सान भी है गीत थोड़ो नाम चला हुआ तेईस और है ये गीत चली सुनीता के नाम राजन और नीतीश के नाम भी तो चलो एक साथ सुनब जाएगी तो ओ बलमा श्वेता बाबूलाल और किशोर खिमिया के गावल एल्बम है रेनबो।

जब तू ड्राइविंग सिखाते हुए तो थोड़ा सा ना खुद लाउड भी अच्छी तरह से जाने के आजकल सड़क पर ढेर जानने वाला दुर्घटना हुआ था और ढेर कोई अपन जान गंवा दे हुआ था। कोनो कोनो ड्राइवर लापरवाह, कोनो कोनो पीते हुए लोग लापरवाह, सब कोई के चला खुद लाउड जाने के कह के रास्ता इस्तेमाल करते हुआ था हाँ कि नहीं। तो यही कहती है बैरा सक की चेहरा सीखे जाए कि निमन से उतु एक ड्राइविंग स्कूल जाइए, अच्छी तरह से सीख ले, लाइसेंस मिल जाए तब ड्राइव करिए, नहीं कि बिना लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करते हुआ और जाके कोई से धक्का का मार दिला कोई की जान नहीं ले। सब कोई की जान बहुत प्यारा है और जान नहीं चेहरा इसे अनजान में जान गंवाए की। अगला गाना गिरीश रूपचंद की आवाज़ है सुंदर परी और गीतों आपने चला हुआ सब संगत यारों के नाम जो हमने सुना था रेडियो मॉस्टर्स रेडियो मनोरंजन पर। और फिर है कि चली ज्ञान और चित्रा खातिर ज्ञान और चित्रा विश्राम रहेलन मौदाल बे बहुत बहुत प्यार के साथ गीत और नाम इंदिरा लौतन गीत और खातिर अनिता फिकॉन फ्लैक्स से अनिता लाल जी मौदाल बे से सभी तो परिवार के नाम एक गीत चली प्रमीला काचबोन से शोभा पोंपले मुझसे हवंजा। और बेशक है गीत हमने चलावते वो सब संगतिया के नाम जो अभी नाइट शिफ्ट में काम करे थे वन जा और हमने के साथ देव थोन राजमन्ना है गीत तो हर खाते सब मन्ना परिवार के नाम और है गीत तो हमने चलावते ऐसा वो सब संगतिया के नाम जो नाइट शिफ्ट करके भी घर लौट रहता या भी घर से निकल जाते वन सा नाइट शिफ्ट करे जहाँ कहाँ भी काम हुआ था सब केवल अब सब बोंक वाज हमने के प्यार हमने के आशीर्वाद तो लोग के साथ बा और पार्वती।

मार ताली मार, मार ताली मार, और पूजा पाठ करला अच्छा बात है, पर कोई की निंदा नहीं करिया, कोई की बुरा नहीं बोलिया, कोई पर इधर उधर की बात नहीं करिया। जो व्यक्ति इधर की बात उधर करेला और दूसर के बारे में बुरा बोलेला, वो सबसे बड़ा पापी है। तई निंदा नहीं करिया कोई की, तो अपन जिंदगी अपन तरीका से जिया, पर जे कौन सी करता कोई की भी नहीं करिया, सबको अपन जिंदगी अपन तरीका से जियला, और इधर की बात उधर कर बात तो थोड़ा पाप लगी। तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलिया, बस अच्छा अच्छा बोली बोलिया और अच्छा संगत करिया, अच्छा लोगों के साथ आइया। रात के 10:50 होता है, तो सुबह भोजपुरी दर का रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 बजे रे अगला गीत किसी के बारे में बुरा ना सोचिया। रतन निहाल हवन गाँव बे से गीत, तो कर पापा फिर कर पत्नी करुणा और सब निहाल परिवार के नाम, और गीत चली गोबिन परिवार के नाम, गोबिन हवन न्यू ग्रोव से हेलो मिस्टर मिसेस गोबिन गीत हो नाम, मिस्टर बालू खुशबेल से हवन मिस्टर बालू मिसेस बालू गीत तो लोग के नाम भी, और है गाना हम चलाते अनिता अनिता जी के नाम, अनिता पांचू के और से घरोला और सब परिवार के नाम, और अजय फैमिली के सब सदस्य के नाम, जो नए बखत में की रात की सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर किसी के बारे में बुरा न बोलिया। सुखदेव राम खेलावन की आवाज़ में

इस दुनिया के भागदौड़ में आदमी भागते रहेगा, कभी इधर भागेला कभी उधर भागेला, भागते भागते हमने जैसे प्रोग्राम के अंत तक चंद्रदेव जुबोधन के गवल गीत भागते रहेला आदमी है गीत के संगे हमने तो थोड़ा छोर अब जा रात के 11 बजे सुन बजे सुनहरे पल प्रोग्राम नीतूचा के साथ और रात के 12 बजे से कल फजे के 5 बजे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्म सॉन्ग सामने की दौरान की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे यही चैनल पर रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर भी। तो जितना कोई हमके टिकटॉक पेज पर देख लक हमने के रेडियो पर सुन ला और फोन कर ला SMS कर ला पसंदीदा भोजपुर गीत मांगला सबको की बहुत बहुत धन्यवाद शुभरात्रि लव यू ऑल और जी प्रताप सिंह सितारू की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते शुभरात्रि बाय नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नाम श्रोताओ, जी हाँ, एक बार फिर सबका स्वागत है और नीतूषा आपके समक्ष। तो सुनहरे पल कार्यक्रम में चलिए हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे संगीतकार जिनका पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है। कौन है वो? पहला गाना सुनेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा।

जी हाँ श्रोताओ, आज हम बात करने वाले हैं राजेश रोशन, जो भारतीय फिल्म संगीत के उन महान संगीतकारों में से एक है जिन्होंने अपनी मधुर धुनों, भावपूर्ण रचनाओं और अलग पहचान वाली संगीत शैली से हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाया। उनका नाम बॉलीवुड के स्वर्णीय युग से लेकर आधुनिक दौर तक सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने रोमांटिक गीतों, भक्ति संगीत, दर्द भरी रचनाओं, उत्साह भरे गाने और शास्त्रीय प्रेरणा से युक्त धुनों को अपने अंदाज में पेश किया। उनका संगीत सरल होते हुए भी गहराई से भरा होता है। इसी वजह से उनके कई गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में जिंदा है।

जैसे कि हमने कहा, राजेश रोशन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत का माहौल पहले से ही मौजूद था। वे प्रसिद्ध संगीतकार रोशन लाल नागरथ के पुत्र हैं। उनके बड़े भाई राकेश रोशन हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक, अभिनेता और निर्माता रहे हैं। इस पारिवारिक माहौल ने राजेश रोशन के अंदर बचपन से ही संगीत के प्रति गहरी रुचि पैदा की। उन्होंने संगीत की शिक्षा गंभीरता से प्राप्त की और अपनी कला को लगातार निखारा।

राजेश रोशन ने अपने पिता से प्रेरणा ली, लेकिन उन्होंने कभी भी केवल पारिवारिक विरासत पर निर्भर रहने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी अलग संगीतिक पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकधुन, पाश्चात्य संगीत, जैज, डिस्को और रोमांटिक मेलोडी का सुंदर संगम देखने को मिलता है। वे धुन को फिल्म की कहानी, पात्राओं की भावनाओं और दृश्य के माहौल के अनुसार रचने में विश्वास रखते थे।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम

राजेश रोशन ने हिंदी फिल्म जगत में अपने संगीतकार के रूप में करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की। उनकी प्रारंभिक फिल्मों में ही उनकी प्रतिभा की झलक दिखाई देने लगी थी। फिल्म कुंवारा बाप और जूली ने उन्हें पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से फिल्म जूली के गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए। इस फिल्म के मधुर संगीत ने राजेश रोशन को एक प्रतिभाशाली और संभावनाशील संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म जूली का संगीत उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस फिल्म के गीतों में रोमांटिक भावना, मधुर ताल और याद रह जाने वाली धुनों का सुंदर प्रयोग था। उनके संगीत में न तो अनावश्यक जटिलता थी और न ही भावनाओं की कमी। उन्होंने आम श्रोता के दिल तक पहुंचाने वाली धुनों को प्राथमिकता दी। इसी वजह से उनके गीत चाहे रेडियो हो, कैसेट हो और बाद में टीवी पर भी बहुत पसंद किए गए।

राजेश रोशन की संगीत शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मेलोडी है। उनकी धुनों में एक प्राकृतिक मिठास होती है जो पहली बार सुनने पर ही मन को छू लेती है। वे गीत के मुखड़े को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे श्रोता तुरंत गीत से जुड़ जाते हैं। अंतरों में तो वे भावनाओं को धीरे धीरे विकसित करते और संगीत को एक सुंदर प्रवाह देते हैं। उनके रोमांटिक गीतों में कोमलता, मधुरता और भावनाओं की सच्चाई मिलती है। उन्होंने प्रेम को केवल उत्साह या आकर्षण के रूप में नहीं बल्कि संवेदनशील अनुभव के रूप में भी पेश किया। उनके कई गीत विरह, इंतजार, यादों और मिलन की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। उनके धुनों में अक्सर पियानो, वायलिन, फ्लूट, गिटार और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रभावशाली उपयोग सुनाई देता है।

श्रोताओं, राजेश रोशन ने अलग अलग प्रकार के गीत रचने में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने रोमांटिक गीतों के साथ साथ कवाली, दर्द भरे गीत, डांस नंबर्स और उत्सव के गीत भी बनाए। उनकी रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार संगीत का रंग बदलता हुआ नजर आता है। यही उनकी कला की विशेष पहचान रही। उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, जितेंद्र, अनिल कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, उनका भांजा और कई अन्य बड़े कलाकारों की फिल्मों के लिए संगीत दिया। उनके गीतों को किशोर कुमार, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफी, मुकेश, सुरेश वाडकर, उदित नारायण 90s में, कुमार सानू, अलका याग्निक, अभिजीत 2000 में, सोनू निगम और अन्य प्रसिद्ध गायकों ने भी आवाज दी। उनकी संगीत रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे राग, सुर और ताल की बुनियादी समझ को लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ जोड़ने में सक्षम रहे। उन्होंने शास्त्रीय तत्वों को इतनी सरलता से प्रयोग किया कि आम श्रोता भी उन गीतों से आसानी से जुड़ सका। उनके गीतों में कठिन शास्त्रीय प्रदर्शन के बजाय मधुर और सुगम रूप को प्राथमिकता दी गई। राजेश रोशन की एक और विशेषता उनका पाश्चात्य संगीत के प्रति खुला दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने गिटार, कीबोर्ड, ड्रम बीट्स, सिंथेसाइजर और ऑर्केस्ट्रेशन का प्रयोग किया, लेकिन उनकी धुनों की भारतीय पहचान कभी कम नहीं हुई। वे नए संगीतिक प्रयोजन को अपनाते रहे, परंतु गीत की भावना और मेलोडी को सबसे ऊपर रखते रहे। 1980s और 1990s के दशक में राजेश रोशन ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों के लिए संगीत दिया। इस दौर में हिंदी फिल्म संगीत में तेजी से बदलाव आ रहा था। डिस्को, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और नए रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने इन बदलावों को समझा और अपने रचनाओं में समय के अनुसार नए प्रयोग किए। फिर भी उनका संगीत अपनी मधुर और भावपूर्ण पहचान से जुड़ा रहा।

उनके करियर का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चरण राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्मों का साथ जुड़ा रहा। दोनों भाइयों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई लोकप्रिय संगीतमय फिल्में दी। दोनों भाइयों के बीच परस्पर समझ और रचनात्मक समन्वय बहुत गहरा था। राकेश रोशन कहानी और दृश्य की जरूरत समझते थे, जबकि राजेश रोशन उन भावनाओं को धुन और संगीत के माध्यम से प्रभावशाली रूप देते थे। राजेश रोशन के संगीत में पारिवारिक भावनाओं का भी विशेष स्थान रहा है। श्रोताओं, उनके कई गीत माँ, पिता, भाई बहन, प्रेम और दोस्ती जैसे संबंधों की गहराई को व्यक्त करती हैं। वे जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में गीत केवल कहानी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि दर्शकों के व्यक्तित्व अनुभवों से भी जुड़ा होता है। इसी वजह से उनके गीत लोगों की यादों, शादियों, उत्सवों और व्यक्तिगत पलों का हिस्सा बन गए। राजेश रोशन का करियर हमें ये सिखाता है कि संगीत में सफलता के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ भावना, समय की समझ, श्रोताओं की पसंद और कहानी के प्रति संवेदनशीलता भी जरूरी होता है। उन्होंने अपने लंबे करियर में बदलते समय के साथ खुद को ढलने की क्षमता दिखाई, लेकिन अपनी मूल संगीतिक पहचान को कभी नहीं छोड़ा। आज भी जब उनका कोई पुराना गाना बजता है तो श्रोता अपने बीते हुए पलों, पुरानी यादों और भावनाओं से जुड़ जाते हैं। यही एक महान संगीतकार की असली पहचान।

होती है। उसका संगीत समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि हर नए दौर में नए अर्थ के साथ सुना जाता है। राजेश रोशन का योगदान हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। उनकी मधुर धुन, सरल लेकिन गहरे संगीत, गायकों के साथ उनके रचनात्मक समन्वय और बदलते समय के अनुसार नए प्रयोगों ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रमुख संगीतकारों की पंक्ति में स्थान दिया है। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत जरूर बना रहेगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: हाँ? क्या कहा?

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।